0: और अल्लाह की राह में माल खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और अल्लाह की खुशनूदी करो और अगर रास्ते में रोक लिए जाओ तो जैसी कुर्बानी मुयस्सर हो कर दो, और जब तक कुर्बानी अपने मुकाम पर न पहुंच जाए सर न मुंडाओ। और अगर कोई तुम में बीमार हो या उस तरह की तकलीफ हो तो अगर वो सर मुंडा ले तो उसके बदले रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो चाहे वो जयसर हो करे, वो तीन रोजे रखे और सब वापस हो। ये हुक्म ये है जिसके अहलो अयाल मक्के में न रहते हो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है।
1: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل خير الله وتزودوا

0: शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: एम दिस एंड एश ब्यूटी क्रीम स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय

मिज़ाइल हमलनि सबबि को बि जानी नुक़सान नाहे थियो। यमनी हुसैन जा सऊदी शहरनि ते हमला, 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। हुसैन सऊदी शहर अबहा, नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतुनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थी पिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिबि हुसैन खे सऊदी अरब जे शहरनि मथां हमले जो सख़्तु जवाब ॾिनो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां सऊदी अरब ते हूसी बाग़नि जे हमलनि जी मज़हब सां गॾु रहण वारे अज़म जो बि वर्जाओ। सऊदी शहरनि ते हमला मज़मत जोगा आहिनि। हमलनि में ज़ख़्मी थियल शहरनि जी जल्द सिहतयाबी लाइ दुआगू आहियां। असां सऊदी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारी जी दिफ़ा लाइ गॾु बीठल आहे। बचाव वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त पाकिस्तान, सऊदी अरब ऐं तुर्किया विच में गॾियल दिफ़ाई मुआदो थियल आहे। त्रिधुरी मुआदे मुल्कनीअ ते हमिलो सम्झियो वेंदो। मदद करण जो पाप को बि शक न अची वेंदी। आसिफ़ बयान में चयो त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ऐं परडे॒ही खाते सऊदी अरब ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत कई आहे। सूरत हाल जो वधीक जाइज़ो वरितो पियो वञे। हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो करे 5.54 रुपया फी लीटर। पेट्रोल जो नओं अघु 364 रुपया 65 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 385 रुपया 95

सघे त मुल्क जी किस्मत जा फैसला कुछ बिजनेसमैन कनि जेकॾहिं सिस्टम तबाह थियो असेंबलीअ में थियणु घुर्जे। हुन चयो आहे त हर कंहिंखे पंहिंजी राय ॾियण जो हक़ आहे। सूबनि बाबति मोहसिन नक़वी जी पंहिंजी राय आहे। मोहसिन नक़वी असेंबली में घटि ईंदो आहे। खेसि बिज़नेस फोरम बदिरां क़ौमी असेंबलीअ जो फोरम इस्तेमालु करणु घुर्जे। पाकिस्तान जी क़िस्मत जा फ़ैसिला हिननि जमहूरियत में हल का बि हिकु पाड़ी सघे समूरनि छठे वेझो ख़ौफ़नाक हादसो ट्रैक्टर ट्राली बिजली जे तारनि सां टकराइजण जे नतीजे में ॿिनि औरतुनि समेत 26 ज़ख़्मी। 103 मोरी वटि पलाल सां भरियल ट्रैक्टर ट्राली बिजली जे तारनि सां टकंट लॻण जे नतीजे में फरीदा हनीफ़ सिकन समेत 6 ॼणा फौत थी विया। इस्पताल मुंतक़िल।

0: सिंध हाई कोर्ट फर्मिंदा पिताफी केस में आईजी सिंध के शोकास नोटिस जारी करेंदे घर एसएसपी घोट की पिताफी के बारे छो बाजियाबी ऑपरेशन की निगरानी आईजी हवाले डीआईजी सखर एसएसपी घोट की निगरानी में कम करने हुक्म जस्टिस तस्नीम सुल्ताना की अदालत लिखित में ऑर्डर जारी कर छो अदालत चयो जो पुलिस ऑफिसर मुलविस हो कानून मूजिब कार्रवाई की वे।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो ती मटियारी की है, सुनते रहो जीएएफएम 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

सेप्टेम्बर महीने जी नव तारीख 2026 ईस्वी सन रबीउल अव्वल महीने जी अॼु ख़ैर सां छवीह तारीख़ आहे 1448 हिजरी सन। साईं जा दिल जे बारे में हिकु शेर आहे त दिल सच दिल कूड़ दिल वफ़ा दिल धोखो केॾो आहे ओखो मापिण माणण पंहिंजे मन खे। वाकई पूरी ज़मीन जी पखेड़ बि मालूम थी सघे थी, समुंडनि ऐं दरियाउनि जी उनाई बि मालूम थी सघे थी, जबलनि ऐं पहाड़नि जी ऊचाई बि मापे सघूं था, पर कंहिंजे मन खे कंहिंजी दिल खे मापण वारो अञा मापो ई ईजाद न आहे थियो। कंहिं ॾाहे चयो आहे त काश न दिल हुजे हा, न प्यार थिए हा, न जुदाई थिए हा, न दर्द मिले हा, न राहूं नेण निहारनि हा, न अखियूं आलियूं थियनि हा, न साहु सुॾका भरे हा, न रूह रीहूं करे हा, न यादि तुंहिंजी अचे हा, न जीउ मुंहिंजो झुरे हा।

साईं मुंहिंजा मुख़्तसिर तारफ़ अवां ताईं पहुचाईंदासीं, थोरी मालूमात अवां ते ॾींदासीं तमामु बहितरीन शाइर उस्मान फ़क़ीर सांगी जी। त मोहम्मद उस्मान फ़क़ीर वलद ख़ैर मोहम्मद फ़क़ीर सांगी, ॻोठु ॼामड़ी सांगी, मीरो खान रोड, लाड़काणो, 16 सफ़र 1193 हिजरी मुताबिक़ 1778 ईसवीअ में ॼाओ। संदसि वालद बि दरवेश सिफ़त हो। फ़क़ीर सर अरबी ऐं फारसीअ जो बि माहिर हो, पर ख़्वाजा अब्दुल्लाही नक्शबंदी नौशर फेरोज़ जो तालिबु हो। संदसि लक़ब अर्शी बिजली हो। दरिया फ़क़ीर दुल्हा ख़ुश ख़ैरमंद हिसबाणी ऐं शतर फ़क़ीर सांगी संदसि सोहबती हुआ। मीर अली मुराद ख़ान टालपुर संदसि शहर ते आशिक़ हूंदो हो। ऐं फ़क़ीर मोहम्मद उस्मान सांगी, जंहिंजी शायरी तमामु मशहूर बि आहे ऐं तमामु आरफाणा कलाम तमामु बहितरीन, जेके तव्हां असां अॼुकल्ह बि पुराणे अंदाज़ वारा नए अंदाज़ में बि ॿुधूं पिया, ऐं तमामु फ़नकारनि उहे अहिड़ियूं काफ़ियूं अहिड़ा आरफाणा कलाम जेके पुराणे पंहिंजो अंदाज़ में त हुया, पर हुनखे नए अंदाज़ में बि हुननि ॻायो आहे। ऐं ॻाल्हि कंदा हलूं त फ़क़ीर मोहम्मद उस्मान सांगी, मोहम्मद

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by.
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
6: Yeah!

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

साईं मुंहिंजा चवंदा आहिनि त मौत जी भेण आहे, कुझु बि आहे, पर मुनासिब निंड बि अल्लाह ताला जी बेशुमार नेमतनि मां हिकु अनमोल नेमत आहे। निंड सिहत लाइ एतिरी त ज़रूरी आहे जेतिरो खाधो ज़रूरी आहे। ॾिठो वियो आहे त हिकड़ा माण्हू सुम्हण सां ई निंड जे वादीअ में हलिया वेंदा आहिनि, पर किन लाइ निंड रुठल हूंदी आहे। पर सर्वे मुताबिक़ एशिया खंड जे माण्हुनि में निंड घटिजी वई आहे। चवनि था त मगरबी दुनिया में बल्ब जी ईजाद निंड जी कमीअ जो सबबु आहे, ऐं असांजी दुनिया में वरी सिहत ऐं समाज जा मसइला निंड जे न अचण या घटि अचण जो सबबु आहिनि। निंड रुसण सां ॼण सिहत बि रुसी वेंदी आहे ऐं ॾींहं जो कमकार करण वारी सलाहियत बि मुतासिर थींदी आहे। अव्हां खे निंड पूरी अचे थी, तव्हां ख़ुशि नसीब आहियो, पर जेकॾहिं अव्हां खे निंड नथी अचे त पोइ बि हुन को बिलो कयो, न त वरी पोइ हीउ कलाम ॿुधो त फरज़ाना परवीन छा पई चवे।

0: साईं मुझा
1: प्यार ऐं पंहिंजा हुजे अहिड़ो प्यार जंहिंमें को आज़ार न पर अर्पनाऊं आथतूं ऐं सहारा हुजनि, जिन में साथ सुगंध इकरार ऐं वाइदा वचन हुजनि। इंसान खे पंहिंजे मुख़्तसर हयाति में अगरि प्यार जो सहारो मिली वञे थो त सननि जीवन झंझारण खां आजो ऐं आज़ाद थी वञे थो। ऐं साईं मुंहिंजा कंहिं ॾाहे चयो आहे त हीअ ज़िंदगी मोहबतनि लाइ तमामु थोरी आहे, पर उन में माण्हू नफ़रतनि लाइ वक़्तु अलाए किथां था आणनि। ऐं साईं मुंहिंजा अलाए छो माण्हू नफ़रतनि जा कंडा पोखे समाज जा पेर पिथूं करे छॾींदा आहिनि, पर कंहिं जुस्तजू में मगन मंज़िल जा मतलाशी ऐं अॾोल इंसान पथरनि ऐं कंडनि सां विछयल राहुनि ते बि मंज़िलनि जो सफ़र तय रखंदा आहिनि। पर असां इहो अर्ज़ु कंदासीं त तव्हां इहो बि सफ़र कयो जेको अव्हां नियाणियुनि ॾांहुं वञो, जेके अव्हां जे राहुनि जो इंतज़ार कंदियूं आहिनि। ऐं नियाणी हमेशह तकींदी आहे उन दर ॾे त मुंहिंजा पंहिंजा कॾहिं था अचनि। ऐं साईं मुंहिंजा इहो हुकुम बि आहे त पंहिंजे नियाणियुनि ॾे वञो, पंहिंजे वस आहार पंहिंजे वज़न आहार तव्हां हुन जी ख़िदमत बि कयो ऐं तव्हां हुन खे ख़र्चियूं बि ॾियो। ऐं हूअ बि जॾहिं कंहिं नियाणीअ खे ख़र्ची मिलंदी आहे, पोइ चाहे बंगलनि में रहंदड़ हुजे, चाहे हुन जे घरनि में वॾियूं गाॾियूं छो न हुजनि, पर जेको हुन खे पंहिंजे पेकनि मां हुन खे ख़र्ची मिलंदी आहे, हुन खे पई सांडींदी, उहा थोरी हूंदी आहे, तमामु रुपियनि में हूंदी आहे, सवनि में हूंदी आहे या हज़ारनि में हूंदी आहे, पर उहा नियाणी उन ख़र्चीअ खे पई लिकाईंदी त मूंखे हीअ पंहिंजनि अबणनि ख़र्ची ॾिनी आहे, हीअ ख़र्ची मूंखे पंहिंजनि पेकनि ॾिनी आहे, ऐं हीअ लटा कपिड़ा मूंखे पंहिंजनि ॾिना आहिनि। पर नियाणीअ खे पंहिंजे वक़्त जे हिसाब सां वठण बि ज़रूरु वेंदा कयो। जेकॾहिं नियाणी ईंदी आहे त हुन जे लाइ ईद हूंदी आहे, भले महीनो कहिड़ो बि हुजे, मौसम कहिड़ी बि हुजे, ऐं जेकॾहिं उहा नियाणी बंगलनि में रहंदी आहे, एसियुनि में रहंदी आहे, पर जॾहिं पंहिंजे ॻोठ ईंदी, पंहिंजे पेके ईंदी, उते भले गर्मी छो न हुजे, मच्छर छो न हुजनि, पर उन लाइ उन बंगलनि खां उहे पेका वधीक हूंदा आहिनि, उहे अबाणा कख वधीक हूंदा आहिनि। सो कोशिशि कयो पंहिंजे नियाणियुनि ॾे चकर बि ज़रूरु लॻायो, पर पंहिंजे नियाणियुनि खे पंहिंजे घर ॾांहुं वठी बि ज़रूरु अचो।

आहिनि प्रोग्राम रोशन जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां। तव्हांजो असांजो साथ रहंदो ठीकु गुज़ारे वक़्तु। हिन वक़्तु असां हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं। कॾहिं बि न वञिजो।

0: मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: ब्यूटी क्रीम असली है जोशो अपराधक भाई बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: साथ तेरा जो। अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसई नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुध।
2: सेकंडन जी बराबर एक बराबर साल हर को करे सके तो पर सही मुझा वक्त के रोके को भी न थो सके चवन था तो असा 24 कलाकन में 21,000 भेरन का वधिक साह खणूं था पर पोए भी एतरन साहन मां एक साह ते भी भरोसा कोने असा के जिंदगी जे हर पल पहर जो कदर करे उन के पांजो सुठो करणो आ उन के सकरायतो करणो आ उन के बेहतर बनाणो आ गाल आहे वक्त जी।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज. सुना साईं, कुछ खबर अथव?
2: छा थियो सोणी?
0: बिंदियन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे. नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
2: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे. पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा. उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओ करे छॾींदा.
0: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब?
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है महबती का पैगाम यहां वहां. GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 9411700333751
1: मिले अवा के मजबूत फायदा शूज ए टू जेड यूनिफॉर्म ते मिले अवा के यूनिफॉर्म स्कूल बैग शूज ए बो स्कूल जे जरूरत वारो सामान कीमत में।

साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां मुंहिंजो मेज़बान नेमत अला जूणे जो साईं मुंहिंजा लफ़्ज़नि जो वज़न कॾहिं गरो थिए थो त कॾहिं वरी लफ़्ज़नि जो वज़न न हुजण जे बराबरि हूंदो आहे उन्हनि लफ़्ज़नि जो असरु इंसान ते गहिरो थिए थो लफ़्ज़ चाहे इंसान जी ज़बान मां निकिरे या वरी कलम जे नोक सां सर्जन उन्हनि जो हुसन पंहिंजो थींदो आहे अहसासनि ऐं जज़्बनि जे इज़हार लाइ लफ़्ज़नि जो सहारो वठणो पवे थो लफ़्ज़ त सदियुनि खां वठी साॻिया ई आहिनि मफ़हूम बि साॻियो अथनि ऐं वरी माना बि साॻी बस रुगो फ़र्क़ु इहो हूंदो आहे त लफ़्ज़नि जी सुहिणी अदायगीअ जो छाकाणि त लफ़्ज़नि जी आहे ऐं उन जी माना अञा वधीक असराइती जुड़ंदी आहे ऐं

सुहिणी अदायगी हूंदी आहे जेका हिक माण्हूअ खे ॿियनि माण्हुनि जे दिलनि में दादलो बणाईंदी आहे ऐं जेका हर दिलि में जॻह ठाहींदी आहे। पर माण्हूअ खे वहम अजायो हूंदो आहे, थोरो सब्र कंदो ऐं माण्हू पाण खे रोकींदो, काबू में कंदो, वहम न कंदो त मंज़िल आसान थींदी।

प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां दोस्तनि जा नाला अवां खे इंतज़ार ओसियड़ो पंहिंजे नालनि ॿुधण जो दोस्तनि लोहर कॉलोनी लाड़काणे खां इमदाद अली दायो दिलबर दायो सैफला दायो जवाद हुसैन ऐं नंढड़ो यासिर हुसैन दायो अज़ीज़ सोलंगी भुटो सोलंगी नूरो सोलंगी मीरपुर ख़ास खां ऐं मीर हज़ार खान डावश सुमेर अली डावश आफ़्ताब खुश्क दादू खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी ऐं दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया फतेह मोहम्मद कनासरो फारूक अहमद फराज़ अहमद कनासरो बेबी शुगफ्ता अनाज़ कनासरो ॻोठ सिराई मोहम्मद नवाज़ धूण खां ॻोठ मोलिन माशी लग बकापुर खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तियार सोलंगी ज़हीर अब्बास ऐं नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर नज़ीर खोस खां बखर खां रमेश कुमार खत्री कृष्ण लाल खत्री ज़फ़र शेख कराची खां हाजी सोराब मंगरियो ॻोठ सजरनो मंगरियो लग बकापुर खां मीर नसीराबाद खां अहमद नवाज़ मक्सी नादर यासमीन मलिक मीरपुर ख़ास खां बरकत अली जमाली बलोच जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां गुलाब खान कुंभर गुलाम रसूल कुंभर शोएब कुंभर ऐं नादर अली कंगो ॻोठ कंगन खां फ़क़ीर मोहम्मद जलालाणी ॻोठ गुलाम सेन जलालाणी खां चनेसर भेण आज़ाद भेण मोरे खां आसिफ अली कोरकाणी ॻोठ जबल खान कोरकाणी खां हिमत अली चांडियो सुल्तान ज़ुबेर चांडियो ॻोठ लश्करी चांडियो लॻे महीम कोल खां त साईं मुंहिंजा आख़िरी

जी हा समय में मुमताज मौला ऐं गुलाबो जी आवाज़ में जेको मां सराइकी गीत ॿुधो पिया इन ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुची पियो पंहिंजे पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

0: It's 11 a.m.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: ब्रॉट टू यू बाय
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: ऐं कोटड़ीअ में मालगाड़ीअ जा टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अप ट्रेन ते गाॾियुनि जी अच वञ मुअतल। कोटड़ी स्टेशन भरिसां कराचीअ खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ मालगाॾी जा टे गाॾा पटड़ीअ तां लही विया। अपग्रेड मुअतल थियण सबब मालगाॾी खे डाउन ट्रेक ते गुज़ारियो वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
5: वादी मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
4: GAFM नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White Age Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार

ॿारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रिसाई बिना रंडक यकायत करणु पहिरीं तरजीह आहे। पेट संजी रहिया मताडो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयुरान हुकूमत सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच शहीद साहफी नसरुल्लाह गडाणी केस में गिरफ़्तार जवाबदार असगर लुंड जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच जी ॿ रुकनी बेंच जस्टिस

स्टेशन भरिसां कराची खां यूसुफ वाला कोयलो खणी वेंदड़ माल अप ट्रेक मुअतल थियण सबब मालगाॾीअ खे डाउन ट्रेक तां गुज़ारियो वियो। पेर तिरकण सबब

0: में बुडी वियल राजा गिरगले जो लाश गोठाणनि पंहिंजी मदद पाण हथ करे वरितो। पुलिस लाश अस्पताल मां ज़रूरी कारवाई बाद वारसनि हवाले करे छॾियो। पुलिस गुज़िरियल ॾींहुं मामले ते ॿिनि ॼणनि खे हिरासत में वरितो।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की।
2: गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान की पहचान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ. इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा. 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
4: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
4: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: 12:45 PM. This time check is brought to you by.
2: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे। अस्करी बैंक।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल है, जिससे इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता दे बसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 उधर रहो।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: Brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमले जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी आयल टैंकर्स ख़िलाफ़ कार्रवाई पासदारनि इनकलाब पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशुनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्क रूबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। आयल टैंकर ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी हदफ़नि ते जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणाए वियो। आबनै उर्स में बि 10 खां वधीक

0: जी टंडरे आदम में उस्ताद मंजूर अली खान जी मज़ार ते हाजिरी। गुलन जी चादर चाढ़े भेटा पेश कई वही। उस्ताद मंजूर अली खान जा गायल गीत अज भी झर जंग मशहूर बनल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अपना घर मटियारी वास
1: GFM 91.6
2: फिल्म की आवाज़।

है, अभी तो हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुन ही लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए इस तरह रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के संभाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जी हम एक बहुत ही खूबसूरत से कसीदे के साथ। हमारी लिस्ट में एक बहुत प्यारा कसीदा मौजूद है, तो आइए जरा कसीदा सबसे पहले एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी कि हर दाने में फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपने मटियारी की आवाज़।
1: रूप जिला नंबर भी अथ 205-58-00-616 शिफाय मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त द इंसान तंदुरुस्त सखर आपके लिए खुशखबरी आज उन्हें मुर्शिद सबियानवी
2: कलंदर लास
3: की बनी है
2: एफएम नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: আমি বলছি FM 91.6 পিতা যা পিতাই
1: लावटो एक खास गाल या सब कोर्स इंप्लेक्स सेक्टर 5 सर रावटो 0711-35642 आई 0310-8166
2: सारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: 44 साल जो तजुर्बो हजारे मरीजन जो एतमाद आगा होम
4: और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर मौजूद हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जरा सा आप लोगों को बताते हैं, जरा सा क्या बल्कि थोड़ा सा लगेंगे तो आपके जैसे देखते हैं कि भाई फला इंसान अच्छा मिलेगा, नहीं होता ये चीज, बिल्कुल भी सही नहीं होती स्किन के ऊपर। एक हर एक

0: अंदर पाई जा रही है। और डी भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन से
1: मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने की वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम को हर स्किन के ऊपर आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, और ये जो चीजें होती है ना जैसे वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन, ये पाकिस्तान में 2 से 3 प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर पाई जा रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो भाई क्या बात है, आपकी स्किन को ऐसे चमका देगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली। वैसे कहते हैं ना जो अच्छा आप महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जब आप देखते हैं ना कि बहुत सारी खवातीन जब बहुत महंगे महंगे फेशियल करा के आती हैं और फेशियल कराने के बाद जो उनके चेहरे पर ऐसे आपको लगता है ना कि बहुत ज्यादा वाला निखार आ चुका है, तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि आपको इस तरह का निखार देती है कि जैसे आपने फेशियल किया हुआ हो। ये एक नाइट क्रीम, टाइम भी बच जाता है, आपके पैसे भी बच जाते हैं, और आपको बहुत से भी बहुत अच्छा वाला निखार भी मिल जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, ये बात हो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर को नजरअंदाज कर देना ये चीज हमसे बिल्कुल भी नहीं हो पाते। और ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर आपको रिजल्ट ना मिले। इतना अच्छा, इतना कमाल का आपको रिजल्ट मिलने वाला है कि आजकल हर कोई चाहता है ना कि जैसे भाई उनकी जल्द जो है वो साफ सुथरी हो, नरम हो, फ्रेश हो, बेदाग हो, गोरी हो, लेकिन उसके लिए ये भी हो जाता है कि भाई आप समझ नहीं पाते कि हमने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जैसे पहले ही मैंने आपको बताया कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है और ये हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने रोजमर्रा स्किन के रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे आप रात को सोने जाएं तो कुछ ही जो पल होते हैं ऐसा होता है कि भाई मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों के पास चलें, अगर आपके पास दिन में कोई भी टाइम नहीं है तो शाम में रात में आप थोड़ा जो ना 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लीजिए। 4 से 5 मिनट मुझे लगता है कि ये इनफ टाइम होता है अपनी स्किन को अच्छे से वॉश करने के लिए और एक ब्यूटीफुल सी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करने के लिए। ये 4 से 5 मिनट बहुत काफी होंगे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपके पास इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ खूबसूरती हासिल कर सकते हैं बल्कि अपनी खूबसूरती। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप खवातीन है, मर्द हजरात है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अपनी स्किन को जरा पहचानिए, उसे क्या चाहिए, आपकी स्किन को जैसे आपकी बॉडी को खाने पीने की जरूरत होती है वैसे ही आपकी स्किन को भी भाई प्रोडक्ट की और अच्छे प्रोडक्ट की नीड होती है। तो बिल्कुल वैसे ही अपनी स्किन के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि भाई बिल्कुल सेफ है और इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर के ममालकात में भी यूज की जा रही है। आप इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं कहीं पर मिल रहा है, वैसे हर जगह पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ, तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए, चले जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, वहां से मालूमात लीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर नहीं, क्योंकि अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां पर रहते हैं वहीं पर आपके लिए ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। बिल्कुल ही चाहे आप हमें सखर से सुन रहे हैं, मोरो से, मिरपोखा से, मठियारी से, सकरण से, मेहरापुर से, या फिर 92 नूरियाबाद से, या फिर लाड़काना की समाते हैं, तो हर जगह आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएं और वहां से नाम लेकर तलब करें। तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करते जाइए, खूबसूरती को जरा पहचानिए, आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और वो आपको किस तरह के रिजल्ट दे रहे हैं ये चीज मैटर नहीं करती, बल्कि आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगी वो वाली खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। ओके जी, मर्द हज़रात, ख़वातीन हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखते जा रहे हैं। और जल्दी जल्दी से हमें भी बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानते हैं और पहले से इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई आप अच्छे से जानते हैं, पहले भी 3 महीने प्रोग्राम करके जा चुकी हूँ दोबारा से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पहले से ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके जी, सो जल्दी से मेरे साथ शेयर किया करें, वैसे भी कहती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ हैं जी, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं लीजिए आपके वो ऐसा में जाने का आपको मौका है, आप अपने फ्यूचर में जाएं और देखें कि भाई आपकी क्या हालत है, आपके हालात अच्छे हो चुके हैं या बुरे हो चुके हैं, आप जाकर देखेंगे फ्यूचर में। आप मुझे बताएं जब आप अपने फ्यूचर में जाएं तो अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे, क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये मैं फ्यूचर में जाकर अपने लिए देखना चाहूंगा या देखना चाहूंगी। जल्दी से मुझे बताइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जाइए। ओके जी, आपके लिए गाने लगाते हैं बहुत अच्छी चीज जो हमारी लिस्ट में मौजूद है और आप लोगों से बातें करते हैं, आपके मैसेजेस जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं, चाहे वो किसी जाने भी आते हैं तो कहते हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

हमारे साथ यहाँ पर गुलाम फरीद बलोच लिख रही है, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, तबीयत ठीक ठाक है और बाकी सारे लोग ठीक है हो? अच्छा, सब लोगों से पूछ रहे हैं, सही है जी, कहती हैं आपका प्रोग्राम ब्यूटीफुल है, थैंक यू वेरी मच जी। और फहीम भाई लिखते हैं कि मेरा नाम तक जो ना ले सका, जो मुझे करार ना दे सका, जिसे अख्तियार तो था मगर मुझे अपना प्यार ना दे सका, वही शख्स मेरी तलाश से, वही दर्द मेरी हयात है। वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा, किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक, अगर मुझे फ्यूचर में वञण जो मौको मिले तो आ सब का पहरी ही दिसा हाँ तो तू अना घना दफा दर बंद कंदी। बाबा ये साल होंदी ना है ना चवा, हाँ नौकर मानू आयो नौकरी कंदा आयो तो समझी सको था।

बताया कहते हैं कि अबाउट टॉपिक फ्यूचर में किसी का मोहताज नहीं होना पसंद करूंगा. अच्छा वो देखेंगे. सही है जी, सही है. और उन खां अलावा चाचा तव्हांजो गानो कल 5 बजे वाले प्रोग्राम में जो बुधो सी. हाँ हाँ एतरे में विसरी वे. अखलाक भाई कहते हैं अज गिलास लस्सी जा पी वो पान सा. हाँ भाई थोड़ी भी लस्सी पी लेना, नींद आती मुझे तो बहुत आती है वाके. और परवा की थी आप ही टॉपिक में आपसे मिलने का पूरा एफर्ट करूंगी. अच्छा और मुगल अमरानी हमें सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया. नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से और कहते हैं अच्छा ठीक है बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि लगा के दीद के जो आस बैठा है पहने गम का लिबास बैठा है, किसी की तवज्जो नहीं उसकी जानिब वो जो एक शख्स उदास बैठा है. कैसी हो? बहुत खूबसूरत. आप बताएं कैसी? बताएं ड्रिंक का इस्तेमाल करके खूबसूरत बनना चाहते हैं? नहीं ना मत कीजिएगा क्योंकि न जो ना निभागो स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर स्किन ब्यूटी क्रीम तुम्हारी खूबसूरती के लिए सफा घड़ी फायदेमंद साबित थी. तुम दुआ दींदा मुख्य वाह वाह सिदरा वाह वाह वाह जो प्रोडक्ट बुधा अभी तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक अड़ी क्रीम है जो मेडिकेटेड फार्मूलो है. मेडिकेटेड फार्मूलो माना इनके जो स्किन वाला डॉक्टर हूँ ना उन्हें तैयार किया है, उन्हें जो फार्मूलो है. सो तुम बेफिक्री स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो चाहे तुम्हारी स्किन सेंसिटिविटी छो न हो.

लाइक एंड शेयर करना। हेलो, अच्छा जेड एस हमारे साथ है फ्रॉम मोरो कहते हैं सलाम अलैकुम, आप और तमाम सुनने वालों को सलाम। शो नाइस है, प्लीज प्ले टू। अच्छा अच्छा मैं समझी, वैसे शमन मिटाली जी गाने जी फरमाइश तो यही तो शमन नची हो पेरी। चलो

और नूरियाबाद से नेक मोहम्मद पालारी हमारे साथ हैं। अदी आपका शो सुन रहा हूँ, जबरदस्त आवाज और अंदाज, क्या ही बात है कसम से, क्या बात है जी। एक मुझे मैसेज मिल गया नूरियाबाद से, मैं सोच रही थी कि वैसे तो पहले भी मेरा प्रोग्राम नूरियाबाद में कनेक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, तो नूरियाबाद से मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था। तो कल का दिन जो था वो पहला दिन था, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पहले दिन लोगों को पता नहीं होगा, आज दूसरा दिन ही एक मैसेज मिला, देखते आगे क्या सूरत हाल होने वाली है। तो मुझे अच्छा खासा आप सब लोगों से रिस्पांस मिलना चाहिए। और ये भी आप बताएं कि डी स्किन ड्यूरी क्रीम आपका बिस्तर, ये जो इतनी तारीफें कर रही है बिलावजह नहीं कर रही हो, इसके बहुत को इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी वहां पर आपके लिए डी स्किन ड्यूरी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए। तो बस जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम में उसके ऊपर आप तक और

छह बाबर एंड मुजम्मिल बाबर हमारे साथ है विलेज अल्लाह बढ़ायो बाबर से भाईजान को वेलकम कहा जाता है। थैंक यू सो मच। भी आपका नाम सुना है या पढ़ा है तो वेलकम कहते हैं। लेकिन मैं इतने ख्याल रखा करिए, अच्छी बात है। और वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करिए, अच्छी बात होगी। हमारे प्यारे जयपाल भाई कहते कि मोहब्बत लिबास नहीं जो रोज बदला जाए, मोहब्बत कफन है जो पहनकर उतारा नहीं जाता। जनाब बिल्कुल आप सही कह रहे। तांची गाल खां एगरी आई हूँ ऐसा। हाँ जी गुड़ गड गुड़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी खड़ी बीहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन के मुनासिब की ख्याल रखो। तमाम पान खूबसूरत हूँ, तमाम जी स्किन ब्यूटीफुल हूँ। जना बाबा हाँ वो एक डाढ़ी हलन एक भी अगर तुम्हारे चेहरे से होजन उ डी स्किन ब्यूटी क्रीम की वजह से खत्म थी वेंदा है। सो हिकड़ो भी एक अगर तुम्हारे चेहरे अची वा तो तुम डिस्टर्ब थी वेंदा आयो। तो बिल्कुल इन चीज के सफा बाय बाय करी छो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो ये मेडिकेटेड फार्मूलो है, तुम्हारी स्किन के सफा ही सफा चिकनो बढ़ाए छी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मर्द मायूस सभी लगाए सकन था।

0: कर।
1: हाँ जी, क्या बात है, बहुत प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अखलाक भाई कहते हैं कि अंसर चांद पे पहुंचने वाला था, अचानक जहाज का टायर पंचर हो गया। नींद से जा गए हो क्या, मुझे ये लग रहा है। और जी हमारे साथ ही यहाँ पर फहीम भाई लिखते हैं कि भाऊ रेशम गली में दुकानदार ऐसे हैं, जो भी प्रोडक्ट उनसे मांगो वो क्रीम उनके पास ना हो तो पांच और क्रीमें दिखा देते हैं, कहते हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छी। हाँ बिल्कुल, असम रेशम गली में ना असा कहीं खबर आए तभी ना तांगे नसी नहीं आना, तो बाबा इन चीजों का थोड़ो बच्चो। अगर दुकानदार तहां सा भी ठगी करे तो उनके चोस बाबा सीधी गाल कर नथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तक घुराए वठो बाबा, बाकी असा के गुमराह न ॾाढा गुमराह थियल आहियो। त तव्हां ग्रीन स्किन ब्यूटी क्रीम वठो बाबा, इस्तेमाल कयो ऐं पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखो।

पोस्ट को लाइक शेयर कर रहे हैं नहीं। अच्छा ये हमारे सारे मीरू खान चौक से अली अकबर बिरोही भाई शफन अली मीर बहर अब्दुल खालिक सियाल सब भाइयों को वेलकम कहा जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और एम अली मोरो सिटी से कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सदरा मुस्कान डी स्किन की क्या बात है। हदीका ज्ञानी का सॉन्ग तो सुनाए हाजिर हाजिर बिल्कुल गुदरायू था। और हमारे सारे जयपाल भाई कहते हैं कि मेरी दोस्ती का बाग छोटा है मगर सारे फूल गुलाब रखता हूँ। दोस्त कम जरूर है मगर जो रखता हूँ लाजवाब रखता हूँ। बिल्कुल ये हुजन गुर्जर।

वापस आती हूँ मैं और यही आप रहिएगा। टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, वापस जल्दी आप लोगों के पास, तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूँ जाकर यूँ वापस आ रही हूँ, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड इज कंप्यूटर शो, सुनते रहिए और हमारे साथ रहिए।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6
1: डी इसलो हाय बायोनल पाकिस्तान
2: KTN
3: यू बाय
4: ग्रेनुलर मिट्टी जो

त उर्दन में अमरीकी अडे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजनि खे बि वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी बि तसदीक कई वई। वज़ीर आज़म जी सदारत हेठि फिनांस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घरो स्कीम ज़राअत ऐं SMEs में तरक़ी लाइ फिनांसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ हारनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रिसाई बंड बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। हुकूमत सां पेट्रोल जे अघनि में घटिताई बाबति संजीदा ॻाल्हियूं करे रहिया आहियूं। कुझु तजवीज़ूं बि हुकूमत आॾो रखियूं आहिनि। कराचीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त धरणनि दौरान हुकूमत राब्तो कयो, मामले ते असां बि अपोज़िशन सां राब्ता कया। पेट्रोल जे मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जे तलबीअ जो वक़्तु तब्दील करे छॾियो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे 10 सेप्टेम्बर 11 वॻे पेश थियण जी हिदायत। कमीशन पंहिंजो हुकमनामे पारकमान नाले वारे कानूनदान सनाला जो लाश हथ पुलिस लाश तवील में वठी मामले जी जांच शुरू करे छॾी। गढ़ी यासीन कतल लाल तकल सख बाईपास वटि हथियारबंदनि नौजवान मुनीर अहमद जाफरी खे वाके बाद हथियारबंद फला ते पुलिस लाश तवण आहे त वाकिलुम न थी सघिया आहिनि वधी वञे। कराचीअ जी गुल जी आई टी जोन वारी इस्तदा रद्द करे छॾी। अदालत चयो त जी आई टी जोन मैजिस्ट्रेट जो इख़्तियार न आहे। तनवीर पास्ता समेत जवाबदार पेश थिया। वकील चयो त अदालत पुलिस खे सरकारी इदारनि जी कारकर्दगीअ जो जाइज़ो वठण जो हुकुम ॾिनो, पर पुलिस समूरनि इदारनि खे किलाणो चालान ॿीहर पेश कयो जे बुनियाद ते एसोसिएशन जे उहिदेदारनि खे नाल जाइ अदालत इस्तदा रद्द करे छॾी। कोट गाॾी लही विया। अप ट्रेन ते गाॾियुनि जी अचवञ मुअतल। बरसात कोयलो खणी वेंदड़

0: आज मंजूर अली खान जा विजर जंग मशहूर।
1: आप सुन रहे थे GAFM KTN
2: मटियारी के अरिक, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। उन पी यकसा मौजूद खानदीन की ताकत मिले फसल।
4: गीत संगीत जो आवाज़ जे हैदराबाद मटियारी बाबा।

0: अपना शहर अप मटियारी मटियारी की आवाज 91.6
1: जी वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटिया पर मादली सूर्याबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में तो खैर हम बात करेंगे लेकिन साथ साथ यहाँ पर बात हो रही है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। ये दोनों प्रोडक्ट अभी मार्केट में इन है। बाकी अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं तो मेरे साथ शेयर किया करें। वैसे भी अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं तो यकीन जाने कि आपको ये लगता होगा कि भाई हाँ हाँ असा चवंदा न सेफ हथन में अची वया आहियूं। कई मरतबा ये थींदो आहे न असांजी दिलि चवंदी आहे हाणे बसि असां हथ हथी

तो बिल्कुल वैसे ही जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी ऐं तव्हांजी दिलि में बिल्कुल ई तव्हां इहो चवंदा त हाणे असांजी स्किन जेका आहे न उहा हथीकी थी वई आहे. त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी ख़ूबसूरती में न सिर्फ़ इज़ाफ़ो आणींदी आहे बल्कि तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदी आहे. क्योंकि जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना इसे तैयार ही इस तरह किया गया है और हर तरह से आपकी स्किन के मुताबिक है जनाब. सबसे पहली बात तो ये है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आप सब लोग डिजर्व करते हैं. वैसे तो आप मार्केट जाते हैं तो आपको बहुत सारे केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट मिल जाएंगे और वो आपको जल्दी में गोरा भी बना देते हैं. और सिर्फ गोरा होना खूबसूरती की अलामत नहीं होती, मैं हमेशा इस बात से जरा आप लोगों को अवेयर करती हूँ कि सिर्फ गोरी रंगत ही हुसन नहीं होता बल्कि आपके चेहरे की स्किन जो है ना उसका क्लियर होना भी बहुत जरूरी होता है. आपके चेहरे पर रिंकल्स नहीं होने चाहिए, निशानात नहीं होने चाहिए, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, तभी जाकर आप मुकम्मल खूबसूरत बनते हैं. और ये सब काम जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम यू चुटकियों में कर देती है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए जो कि 2-in-1 है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है और आपके चेहरे पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा हुसन मिलेगा, ऐसी खूबसूरती मिलेगी जैसे आप कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स हैं और विटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना ये दोनों चीजें फेशियल के अंदर यूज की जाती हैं. तो बिल्कुल वैसे ही आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर भी ऐड की गई है ताकि आपकी स्किन की जो है ना वो हिफाजत भी होती रहे और आपकी स्किन की खूबसूरती जो ना वो भी बरकरार रहे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग कर सकते हैं, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, आपकी खूबसूरती को ऐसे सफाई या VIP बनाई चली दी. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. तो सिर्फ 2 दिनों में वासी नतीज के लिए आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि जदीद अज़ा, जैसे आपको पता है कि इसके अंदर अल्फा आर्बुटीन भी है, कोजिक एसिड भी है, ग्लूटाथायोन भी है, ये तमाम चीजें जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई और आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपकी स्किन को इस तरह खूबसूरत बना देंगे कि आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हो या हाइपर पिगमेंटेशन हो या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा इस तरह के मसले हैं जो कि भाई आप चाहते हैं कि ये खत्म होने चाहिए, आपकी स्किन मॉइस्चराइज नहीं है, तो हर तरह से आपकी स्किन को जो है ना खूबसूरत बनाएगा, चमकदार बनाएगा और आपकी खूबसूरती की जो है ना वो एक अलग ही लेवल हो जाएगी. वैसे आपकी जल्द की साख जो है ना वो बेहतर हो जाएगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई अब हमारी स्किन जो है वो नरम, मुलायम और सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इतने सारे फायदे हैं जब आपको मिलेंगे जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे. डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल किस तरह करना है क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. सोने से पहले आपने बस डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है और सबसे पहले आप क्या करते हैं अपना फेस वॉश करेंगे. फेस वॉश रात का जो होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप रात को फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो यकीन जाने अपनी स्किन के साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं. रात को फेस वॉश लाजमी किया करें, लाजमी. मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप नाइट क्रीम लगा रहे हैं तभी आप फेस वॉश करेंगे, अगर आप ना भी लगाएं तब भी आप रात का फेस वॉश स्किप बिल्कुल भी ना किया करें. रात को फेस वॉश करें, अच्छी तरह से अपने चेहरे को क्लीन करें, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करें. सॉफ्टली नरम नरम हाथों से आप अप्लाई किया करें और जब आप नाइट क्रीम लगा रहे होते हैं तो उसको मसाज नहीं किया करें, ये चीज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देती है आपकी स्किन को. तो बिल्कुल जी आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए और मोहब्बत से लगाइए, आपको मिलेगी ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से डिजर्व करते आ रहे हैं. और उसके साथ साथ खूबसूरती की बात हो और स्किन केयर आप जरा इग्नोर करें तो ये कैसे चलेगा. तो स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है. अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, आप महंगे महंगे पार्लर नहीं जा सकते हैं, फेशियल्स नहीं करा पाते हैं, आपके पास इतने पैसे भी नहीं है, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, तो बस आप एक डब्बी जो है ना परचेज करेंगे जिसका नाम है डी स्किन ब्यूटी क्रीम और ये डब्बी आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. ऐसा जादुई सा असर हो जाएगा और एक मैजिकल प्रोडक्ट है, बस आप इसे लगाएंगे तो आपकी खूबसूरती आपको चुटकियों में मिल जाएगी और वो वाली खूबसूरती जो हमेशा आपके साथ मौजूद रहने वाली है. तो जल्दी जल्दी से इस्तेमाल करती रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और हमेशा के लिए हसीन, प्यारे और पुरकशिश बनते जाइए. अच्छा तो यहाँ पर आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं सबको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. प्रोग्राम के दूसरे घंटे में हमने एंट्रियां मार ली हैं और जितने भी लोग हमारे साथ हैं जनाब वेलकम. और साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं, फर्ज कर लीजिए अगर आपको फ्यूचर में जाने का चांस मिल जाए, यानी कि फ्यूचर में आप चले जाएं, तो आप अपने लिए क्या देखना पसंद करेंगे कि भाई हम फ्यूचर में तो गए हैं लेकिन हम अपने लिए ये देखेंगे भाई हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, ये है, वो है, ये सब मिला या नहीं मिला देखेंगे या क्या देखेंगे. जल्दी से मुझे बताइए हमारे प्रोग्राम कैसे बनते जाएंगे और आप मुझे 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं.
तो फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, ऐसे आपकी मोहब्बतें जो नए प्रोग्राम से साबित होती हैं। तो मोहब्बतें दिखाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। बाकी आपके मैसेजेस की जानब आते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर पैनल की जानब आते हैं तो आपके मैसेजेस हैं। और ये हमारे साथ हैं जी हमारी फजली। और फजली क्या कहती है, कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, वेलकम कहते हैं स्वीटी आपको भी। और कहती है कि सलाम टू माई स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके, सबको वेलकम कहते हैं आपकी तरफ से और आपको भी वेलकम कहते हैं अपनी तरफ से। और जी हमारे साथ हैं यहाँ पर और भाऊ, एक सॉन्ग सुनाओ शाम जो दिलकश नजारो तू ऐ माँ, काशिफ अघाणी की आवाज में। बिल्कुल जी आपके लिए लगाएंगे गाना। गोट गुलाब लगा रही खान, साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम श्योर नाइस, प्लीज प्लीज समीना गुडी। ओके, और ये भाऊ लिखते हैं कि अच्छा भाऊ जी, मैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करूंगा। अच्छा अच्छा, वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला है। बहुत से लोगों की स्किन थोड़ी कॉम्प्लेक्सियों में तो उनकी स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है, लेकिन गर्मियों में बड़ी ऑयली हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि भाई मेरी स्किन ऑयली है या ड्राई, कॉम्बिनेशन टाइप है। तो स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल मौसम में भी यूज की जा सकती है, हर स्किन के ऊपर भी यूज की जा सकती है और हर एक इंसान यूज कर सकता है, चाहे आप मर्द हजरात हैं, चाहे आप बस इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए। और कहते हैं कि भाऊ भाऊ पैनल पे नजरें करम करें, पैनल पर ही मेरी नजरें करम है, कमेंट्स की जाने में गई नहीं हूँ। और कहते हैं मैं तो कराची से सुन रहा हूँ, यहाँ नहीं मिलती, कराची में नहीं मिलती तो नंबर के ऊपर राता किया करें जी, नंबर किस लिए बताती हूँ बाकी। ओके जी, नंबर आपको बताने लगी हूँ, जल्दी से नंबर्स के ऊपर रابطہ कीजिए ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए अवेलेबल हो जाए। तो नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाह 25-970। यो नंबर आहे 03-27-38-4309 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर आ। बिल्कुल तमाम डायल करे पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था, चाहे तमाम दुनिया जे केड़े भी कोने में हुंदा तमाम जिलाए डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराई वेंदी, ठीक आहे। और जी हमारे साथ है मुनव्वर अली मुगल भाई, मीरपुर खास ही हमारा शो सुन रहे थे, सिद्रा मुस्का नाइस शो, मीरपुर खास FM की आवाज बहुत स्लो है, आवाज तेज करवा दें। ये चीज मैंने भी जरा देखी है, मीरपुर खास में जो होता है ना, कभी गाने की आवाज बहुत स्लो आती है, आरजे की आवाज बड़ी तेज आती है, तो थोड़ा जो ना वो सिस्टम को सेट रखें जी, आवाज को जरा ऊंचा कर दे, कुछ नहीं होता। और ये जरा सिस्टम का जो ना थोड़ा इशू मुझे भी लगता है जब हम सुनते हैं जी मीरपुर खास का, तो है उनके अंदर ये चीज, ठीक करें जी आप आवाज को जरा तेज कीजिए, कुछ नहीं होगा, लोगों तक आवाज ज्यादा पहुंचेगी और ज्यादा लोग हमें सुन पाएंगे। अच्छा ये मुनव्वर भाई हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। बाकी आप फेसबुक वाले लोगों की जाने भी आ जाते, लेकिन मेरे पास एक गाना मौजूद है तो हम जरा सोच रहे थे कि एक गाना भी सुन लेते हैं, तो ये वाला गाना सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं वाइट एश एंड डीज ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। जल्दी से इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए, क्योंकि आप खूबसूरत बनना चाहते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि आपको सही तरह से गाइड नहीं किया जाता कि भाई आपने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है। तो जल्दी जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते जाइए। अच्छा किशोर भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या बात है जी, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं कि बचपन में मेरे साथ ये हो गया। ऐसी बात है, वैसे एक चीज मेरे साथ ही हुई थी बचपन में, लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी। तो हाँ, ये आए जैसे मानो खुदार हूं ना, जैसे सावधान जमान हूं ना, वो बिल्कुल ये करना है। तो ये अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, मुझे ये लगता है। अच्छा सो अखलाक भाई को शायद नींद आ रही है, और ये हमारे साथ हैं जी रिजवान अली। रिजवान भाई क्या कहते हैं, कल आपने मेरी फरमाइश नहीं लगाई थी। बिल्कुल जी, आपकी फरमाइश मुझे याद है, आपका गाना लगाते हैं। नजीर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, अटियारी से आपने हमें ज्वाइन किया है, आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। फरवा कहती हैं, आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया फरवा। एहसन अली भुट्टी हमारे साथ है लाड़काना से, आप हमारा शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। लाड़काना में आपको हर जगह डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है, हाय हाय। जब मैं बोल रही हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, कि लाड़काना में आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ना एक ये क्वालिटी है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और यानी कि इसका कोई डर नहीं कि भाई आगे अगर स्किन सेंसिटिव हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, ये प्रॉब्लम है स्किन के साथ हो, आप नहीं प्रोडक्ट यूज कर पाते तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, दिल खोलकर इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

चाचा खालिद भी हमारे साथ ही। चाचा खालिद बिल्कुल जी, इस टॉपिक आपको समझ आया या अभी तक नहीं आया? आरडी किंग हमें सुन रहे कहते हैं राशिद अली शो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। बकली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा फहीम भाई कहते हैं मैं संडे वाले दिन कराची में अवेलेबल कराऊंगा और सर खालिद से भी तबीयत पूछने जाऊंगा। चलेंगे, अच्छी बात है। और आप जरा मालूम कीजिएगा कराची में कहां कहां पर टी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराने की नीड है। वैसे जहां जहां पर आप रहते ना वहां पर तो करा ही रहे, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और बाकी जो लोग जाएं तो वो भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से परचेज कर सके। अच्छा बिलाल अली हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूं जी, आप बताएं कैसे हैं। और यहां पर महर इरफान सियाज साहब हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके प्रोग्राम को, कहते हैं ग्रेट प्रोग्राम में मार्जे, थैंक यू वेरी मच सर। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपको प्रोग्राम पसंद आता है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ है, खुश आमदी, वेलकम। और जी खालिद नोटकानी हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, मातली से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदी। मातली में बताएं जरा, टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं?

की तसल्ली कर लीजिए, लाड़काना पूरे लाड़काना में डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह अवेलेबल हो चुकी है, तो आप भी बस कहीं पर भी जाइए आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ नहीं भी मिल रही है, फर्ज कर लीजिए कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर है वहाँ पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जी नंबर के ऊपर रब्ता करेंगे जो नंबर आपको मैं बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर। अच्छा जयपाल भाई कहते भाई नंबर तो ऐसे बता रही हूँ जैसे वो फ्री में दे जाएंगे प्रोडक्ट, नहीं नंबर आपको याद हो जाए ना इसीलिए ऐसे बताती हूँ आराम से स्लो स्लो। वैसे कई लोगों की ये भी शिकायत आती है कि सजरा बड़ा तेज बोलती है, नंबर बड़ा तेज बताती है तो हम नोट ही नहीं कर पाते, इसलिए मैं जरा कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो में बता दूँ ताकि आप जरा नोट कर लें।

अच्छा खालिद भाई जान कहते हैं कि मातली में नहीं अवेलेबल हुई अभी तक डी स्किन ब्यूटी क्रीम। भाई आप जाइए तो मालूमात लीजिए और वहां से अच्छे से पूछिए दो चार जनरल स्टोर से, और फिर जो आपको नंबर बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता कीजिएगा, ठीक है। और हसनैन दर्स भाई हमारे साथ ही शहर दड़ोखा, हसनैन दर्स, सतार दर्स, वकार दर्स, सूरन जो सतायल, शायर फिदा हुसैन दर्स, अली धान की चिंता भली करी आया। अच्छा जाहिद अली बुर्दी भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। सही बात है, सारे लोग कराची जा रहे हैं, कराची वाले लोग आ जाए।

असां भाॻ वारा आहियूं छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम असांजी आहे तव्हां बि भाॻ वारा थियो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजी करायो छो त वठी अचो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो छो त तव्हां सुहिणा थी वेंदा ऐं ये हमारी साल थियनि जी अच्छा मेहर इरफान सियाज साहब कहते हैं मैम आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम डिग्री ओके जी डिग्री से आप हमारा शो सुन रहे सर बहुत शुक्रिया और पहलवान चांदी बातें क्या बात है हेलो जी हेलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएगा पहलवान भाई ओके जी सर यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होंगे जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना अपनी जगह से नहीं हिलिएगा ठीक है मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाएगी

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

0: इजाफा, तीन की ताकत मिले।
1: 91.6 सुंदर जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई, पिता देव से नूर मुझो तो
1: सुंदर जो आवाज, बुधंदा रहो।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88.8 पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जना और सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डीज की ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, इस प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं बहुत ज्यादा और आगे खूबसूरती का ख्याल रखा जाता है उससे भी बहुत ज्यादा। ना चाहते हैं खूबसूरत आते हैं तो बिल्कुल जी आप हमारे प्रोग्राम में आ जाइए, आपको मालूम पड़ेगा कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए खूबसूरती और खूबसूरती हासिल करना कितना आसान काम हो जाएगा। वैसे तो जब आप मार्केट जाते हैं तो वो वाली बात है कि बिल्कुल दुकानदार बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये वाला बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, इसकी ज्यादा आजकल डिमांड चल रही है, लेकिन ऐसा कोई सी नहीं होता। अगर आप मार्केट जाएं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करने जाएं, आपके जहन पे ये चीज होनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि सिद्रा क्यों इतनी बातें करती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में, क्योंकि पर्सनली बताऊं तो भाई हमारे घर में भी यूज हो रही है, सब लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पता है कि सिद्रा बिल्कुल सही कह रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो

बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को जो ये वाइटामिन बीट्स और माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, ये दोनों चीजें बड़ी निराली बना देती हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये 2-in-1 क्रीम है, यानी कि ये एक नाइट क्रीम भी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ऐसा जैसे कि आपने फेशियल किया हुआ है। तो ये इतना कमाल का प्रोडक्ट आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, तो भाई क्यों आप चांस मिस कर रहे हैं, मौके पर चौका मारिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अभी रोजमर्रा ब्यूटी केयर में आप शामिल करेंगे जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और साफ सुथरे अच्छी तरह मॉइस्चराइज भी आपकी स्किन को कर देगा। आपकी शख्सियत में ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी केयर रूटीन में आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जो कि आपकी स्किन को बनाए इतना खूबसूरत, इतना शानदार, ये बस आपकी सोच है। अच्छा, मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज भी आपको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप यहाँ देती है, और डी स्किन आप जरा इन आपको कोई और प्रोडक्ट पकड़ा दे के, मासूम लोग होते ना, पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको नहीं होता पता, बस वो जाते हैं दुकानदार, उनको जो भी बोलता है तो बस वो यकीन कर लेते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें ना, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के डब्बे के ऊपर एक डॉक्टर औरत का फोटो है, ठीक है, डॉक्टर माई जो फोटो आए, जिन तक ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम आयो हुन जे मथां हिकिड़ी माई जो फोटो आहे, जेका डॉक्टर ओ ही आहे त उहो क्रीम जेका सिदरा वधाईंदी आहे। बिल्कुल ॾिसो, इहा निशानी तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठो त माई डॉक्टर जेका आहे हुन जो फोटो ॾिसी करे वठिजो, ठीकु आहे। ऐं ॾाढी सफ़ा प्रीमियम क्वालिटी जी प्रोडक्ट आहे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान खां ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे मिले थी, तमामु ज़बरदस्त प्रोडक्ट आहे। ऐं सॼे पूरे पाकिस्तान में सिर्फ़ 2 या 3 अहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जंहिंजे अंदर वाइटामिन बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहे, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि उन्हनि मां हिकु आहे। सो तव्हां ख़ुशि नसीब आहे, तव्हां वटि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पहुती आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो फ़ाइदो वठो बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो। अच्छा, तव्हां नंबर ते राबितो नथा कयो, छो भला? नंबर से रातो कयो ऐं पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। अच्छा, हुन खां अलावा हिकड़ी अदी मूंखे चयो न त मातली में कोन थी मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम, त अदा हुनखे ॾसींदमान त तव्हां फानी ऐं माती खान जनरल स्टोर आहे जंहिं ते तव्हां वञी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। फानी जनरल स्टोर ऐं माती खान जनरल स्टोर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थियल आहे, ठीकु आहे, आराम सां मूंखे ॿुधाईंदा वेंदा त तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं। सो इहे उहे जनरल स्टोर आहिनि जितां तव्हां वञी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सघो था। बाक़ी नंबर ॿुधाईंदी हलां जेको तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराईंदा, त उहो नंबर आहे, सभ खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नंबर आहे उहो आहे 03-1252-9070-0312-50-25-970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-273-38-4309 ॿुड़ी 332-73-84-309। बिल्कुल सही नंबर आहे, हिन नंबर ते तव्हां कॉल बि करे सघो था, मैसेज बि करे सघो था, ऐं भाई साहब खे ॿुधायो, भाई साहब असां वटि कोन थो मिलेव डी स्किन ब्यूटी क्रीम, अवेलेबल कराए वञो, असां बि हणूं, असां बि सुहिणा थियूं।

ओके जी, हम लास्ट लिंक में आ चुके हैं प्रोग्राम की, तो सब लोगों को वेलकम इन खुश आमदीद। फहीम भाई कहते हैं कि भाऊ डॉक्टर जो नालो छाए, डॉक्टर माई जो नालो डॉक्टर आए, परायण माई जो नाला न पसंद। बस तक निशानी बुधाई ना, निशानी ते तुम गौर कर जो सही है जी। उन मानन के जिनके थोड़ो बेवकूफ बनाईंदा दुकानदार, उ थोड़ो उन्हन का होशियार सही है। और यहाँ पर जी

अच्छा ये हमारे साथ हैं जयपाल भाई, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि ताल्लुक मोहब्बत का ही हो, दोस्ती के रिश्ते भी इश्क से ऊंचा मकाम रखते हैं। और लिखते हैं भाऊ जी, जनाब खुशी जी की तरफ से भी सलाम पूछ रही थी आपका, दीदी का शो ज्वाइन करते हो? मैंने कहा कभी कभी ज्वाइन करता हूँ। अच्छा खुशी का बताओ कैसी है, ठीक ठाक है, मजे में है? और ये हमारे साथ है, किसी ने मैसेज किया है, सिर्फ लिखा है हाय कैसी हो। जी हाय, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कौन है और कैसे हैं। और ये हमारे साथ हैं जी जुलरी खान खालिक लाशारी, शो नाइसा सॉन्ग फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल मुद्राएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर या कौन है? अच्छा मोहम्मद जमान भाई लिखते हैं कि चापे

फ्यूचर में जाऊंगा तो सबसे पहले कुछ देखना है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि वो जो फेस पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती है, तो रिजल्ट चेक करूंगा जाकर। इतना फ्यूचर में जाएंगे, बस ये देखने जाएंगे। ये तो आप वैसे ही अभी चुटकियों में देख सकते हैं, आप इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आपको पता चल जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कितना अच्छा

अच्छा जयपाल भाई कहते हैं कि वैसे भाव ट्राई करूंगा मगर पहले खुशी जी को यूज करवाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा विवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें भाई। रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं। तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम

पाऊंगा। ओके ओके जी ओके, भाभी को पहले यूज करवाइए फिर आप यूज कीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं होगा, भाभी बोलेगी कि वाह फर्स्ट टाइम जयपाल ने इतनी अच्छी प्रोडक्ट की फरमाइश करी है। अच्छा विवेक भाई भी हमारे साथ है, कहते हेलो सिस्टर मैं भी आपका शो सुन रहा हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट आपके लिए, मास्टर मंजूर का कोई भी सॉन्ग प्ले करें भाई। रिक्वेस्ट जब होना तो थोड़ा पहले आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं। तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है। ये आते हैं प्रोग्राम में, आप जानते हैं कि लास्ट लिंक जो होता है ना वो ऑलरेडी पहले से लोग फरमाइश कर देते हैं तो उनके गाने लग चुके होते हैं। तो ये जो आप गाने की फरमाइश करें ना ये आपको 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुनाऊंगी, ठीक है। चाह के मारे कोई हिते छो आता कोई हिते छो हर कहीं पांजो पांजो हिकड़ो तांजे कौन है तो रीजन आहे। सो थैंक यू तांजो मोहब्बतूं आहिनि तां इन काबिल समझो पिया ऐं यकीन ॼाणो त इलाही तकलीफ़ थींदी आहे जॾहिं बिला वजह तव्हांखे माण्हू तंग कंदा आहिनि। सो ख़ैर इन्हनि ॻाल्हियुनि खे त ॾिठो वेंदो, बहरहाल तव्हां मूंखे ॿुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं तव्हां इस्तेमालु कयो। और जी ये खालिद भाई हमारे साथ हैं जो हमें मातली से सुन रहे हैं। तो मातली में बिल्कुल आपको बता दिया कि आप कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप मातली में जाइए पानी जनरल स्टोर के ऊपर या फिर माथी खान जनरल स्टोर के ऊपर, वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये हमारे साथ है गुलजार हुसैन भाई, मैं भी आपको यही कहती हूँ अपने एरिया में विजिट किया करें, बताएं जरा, बताएं नहीं बल्कि पूछे लोगों से कि कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि अगर आप जाएं अपने दरवाजे से निकलें जो भी करीबी जनरल स्टोर है वहाँ पर आपके डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाए। अच्छा फरवा फरवा तव्हां गाने जी फरमाइश कई मां ॾिसां थी हली वियो त हलाईंदो न त 5 बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधी वठंदासीं। अच्छा पहलवान चांडियो भाउ तव्हां बि गाने जी फरमाइश कई आहे ऐं तव्हांखे प्रोग्राम पसंदि अची पियो, सो थैंक यू सो मच। रमज़ान भाभी असांखे जॉइन करे चुको आहे, रमज़ान भाउ तव्हांजो बि मोहबतूं आहिनि, तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा फज़ीला कहती है कि टॉपिक में देखना चाहूंगी कि हमारी आरजे सिद्रा मुस्ते या हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है रेडियो, क्योंकि आगे वजह से तो सुनते हैं। यदि वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी आपका शो सुने, आरजे खाला सिद्रा मुस्कान का शो सुने। अच्छा चलिए जी, इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती रही है।

ओके जी ओके बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि ये प्रोग्राम शाम के प्रोग्राम, ये गाना जो है वो शाम के प्रोग्राम में अगर फरमाश होता तो क्या ही हो जाता, लेकिन जयपाल भाई इसी प्रोग्राम में आते बोलेंगे मेरी मर्जी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपकी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो निखरती रहे, आपकी अगर खूबसूरती निखरेगी तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई चेहरे की वजह से थोड़ा परेशान है, स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन टाइप है, हर तरह से आपको ये लगता है कि भाई हमारी स्किन के मुताबिक तो कोई प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप लगा चुके हैं आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते हैं, तो एक मरतबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाकर देखिए, क्योंकि वैसे ही जब आप दो रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी बात है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल उन सब डॉक्टर्स ने मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया है। और एक मजे की बात है कि इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स है और माइक्रो बीट्स फार्मूलेशन है, और जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपकी ये नाइट क्रीम भी हो जाएगी, और आपको मिलेगा ऐसा निखार जो कि खवातीन बहुत महंगे महंगे फेशियल कराकर हासिल करती हैं, आपको मिल जाएगा जीरो थोड़े थोड़े टाइम में और थोड़े थोड़े पैसों में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ऐसा मेरे भी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए। बिल्कुल ही शाम जो दिलकश नजारो तू वही माँ, समुंड जो छोलियो किनारो तू वही माँ, हिते बो गानो बुधंदासीं, बस अलाए कंहिंजो ही गानो हूंदो तव्हां कॾहिं कॾहिं मूंखे चढ़ियो करे छॾींदा आहियो। एॾियूं गाने जूं फरमाइशूं कबियूं आहिनि, न कयो बाबा न कयो, न त कॾहिं जिन चढ़ियो न मूंखे, कंहिंजी फरमाइश कोन लाहींदी मां। ऐं बाक़ी जिन रहिजनि था मूंखे अचे शाम वारे प्रोग्राम में फरमाइश कजो, बिल्कुलु तव्हांजा गाना हलाईंदासीं। और एडवोकेट कामरान शाह साकी हमारे साथी जी, वालेकुम असलाम, ख़ुशामदीद कहते हैं भाईजान को।

आज के सिंधी सुन रहे हैं। अच्छा सफदर अब्बास कहते हैं सलाम जी, वालेकुम असलाम, सुपर हिट मैसेज करूं आपको, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं आप। ओके बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे ये डॉक्टर तो अपनी है ना सुनाने उसका शेरा।

अच्छा बिलाल लिखते हैं कि यूं मिलते हैं जैसे ना कोई जान ना पहचान, रानिस्ता नसीर आज वो अनजान बहुत है। हाय हाय। अच्छा कामरान खान सारखी बात वहां जो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम उधू पया फरवा। थैंक यू सो मच तुम भी इससे गड मौजूद आयो। नहीं चाचा इतने सारे प्रोग्राम्स कर लिए ना तो अच्छी खासी स्कीम के बारे में पहले से ही। बिल्कुल जी, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिएगा, इससे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लोग जान जाते हैं। और एडवोकेट कामरान खान भाई लिखते हैं कि आजकल मैं आपका प्रोग्राम बहुत दिल से सुन रहा हूं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, टाइमिंग रिपीट करें। मेरी प्रोग्राम की टाइमिंग है जी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक और मैं दूसरा प्रोग्राम करती हूँ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। ओगरी जवान मोहम्मद बचल संभानी भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है। किशोर भाई कहते कितनी हसरत है हमें तेरे शो में कमेंट करने की। बस कहते हैं कि सही है, कुछ नहीं कहते।

0: करो।
1: भाई ये गाने चलाकर हम उन गानों की जो है ना वाइब ले रहे होते। अच्छा शुएब मंगी भाई वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहा जाता है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं जी इजाजत। वरी तासा मुलाकात मुझे थे पई पंज बजे वाले प्रोग्राम में। तो पांजो ओ हिनु सारो ख्याल रखना। आई बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करजो बाबा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾाढी भली क्रीम अथव, मजाक न अथव अला तव्हां इस्तेमाल करे ॾिजो, तव्हांखे ॾाढा भला रिज़ल्ट मिलंदा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड क्रीम आहे ट्राए करे ॾिसजो। ऐं पंहिंजो इलाही सारो ख़्याल रखो। किथे का ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था। मुंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे, कानड़ो शानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था। सुमुकलाणी नानी बाबू सिन सलामत सा सलामत। अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White Ash Beauty Cream Skin Zone International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Yulia Granular Mitti.
7: कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बैरी जहाजन के अमेरिका पारां तबाह करण काम ईरानी टैंकर से हमले जूं वीडियोस भी जारी करे छडियूं। सेंटकॉम मूजिब ईरानी आयल टैंकर खिलाफ कार्रवाई पासदारन इनकलाब पारां अमरीकी बेड़न के निशानो बणाइण वारन कोशिशन बाद कई वई। अमरीकी परडेही वजीर मार्क रूबियो भी चयो आहे त तहरान अमरीकी बैरी बेड़न के ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा आयल टैंकर तबाह कया वेंदा। आयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी अदबन से जवाबी वार उर्दन में अमरीकी अडन के निशानो बणाए वो। आबना अरुंस में भी डह का बेड़न के निशानो बणाने की दावा रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फौज उर्दन के शहर अल रिज़क में कायम अमरीकी अडे के निशानो बणायो। अमरीकी बैरी के बिन के भी निशानो बणाए वो। पाजर इनकलाब उर्दन में अमरीकी अडे से कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजन के वो नुकसान पहुंतो है। उर्दन पारा ईरानी मिजाइल के हमले की तस्दीक कई वही। वजीर आजम की सदारत हेठ फिनांस 2628 बाबत इजलास पांजो घर स्कीम जरा एसए जो जायज। हुकूमत असा पेट्रोल के अघन में घटताई बहालियों कर रहा हूं। कुछ तजवीजों भी हुकूमत आडो रखी आन। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम चयो त धरणन दौरान हुकूमत राबतो कयो मामले ते असां बि अपोजिशन सां राबता कया आहिनि। पेट्रोल सस्तो थियण घुर्जे। सिंध विरहाङे वारनि बयाननि ख़िलाफ़ सिंध बार पारां सुभाणे यूनिटी ॾियारो मल्हाइण जो ऐलान। अदालतुनि में बि को वकील पेश न थींदो। सिंध बार काउंसिल जो चवणु आहे त सिंध जे वहदत ऐं यकजहतीअ ख़िलाफ़ कंहिं बि क़दम खे क़बूल न कयो वेंदो। सिंध विरहाङे वारा बयान बर्दाश्त जोगा न आहिनि। एहतजाज तौर सुभाणे अदालत कार्रवाई जो बाइकाट कयो वेंदो। मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार जे तलबीअ जो वक़्त तब्दील करे छॾियो। घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार खे 10 सेप्टेम्बर 11 वॻे पेश थियण जी हिदायत। कमीशन पंहिंजे हुकमनामे में चयो त घरू वज़ीर वाज़ियो करे त वारसनि खे सुवाल पुछण जो हक़ आहे या न। कराचीअ में मंगो पीर में शागिर्द जे क़तल ख़िलाफ़ वारसनि जो थाणे आॾो लाश रखी एहतजाजी मुज़ाहिरो। धरणो महिराण सिटीअ में घर अंदरि फुर दौरान मज़ल थियल शागिर्द जे वारसनि एहतजाज कयो। वारसनि चयो आहे त गुज़िरियल ॾींहुं 6 फोरू घर अंदरि दाखिल थिया। पुलिस वर्दियूं पहिरियल 2 फोरू बि शामिल हुया जिन खे फायरिंग करे नौजवान क़तल कयो। गढ़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंद हथां क़तल। लाश अस्पताल मुंतकिल। सखर बाइपास वटि हथियारबंद नौजवान मुनीर अहमद पुट गुलसन जाफरीअ खे क़तल कयो। वाके बाद हथियारबंद फरार थी विया। इतलाह ते पुलिस पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वाके जा कारण मालूम न थी सघिया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। कराचीअ जी अदालत गुल प्लाज़ा साने जे जांच लाइ GIT जोन वारी इस्तदा रद्द करे छॾी। अदालत चयो त GIT जोन मैजिस्ट्रेट जो अख़्तियार न आहे। ॿुधणीअ दौरान तनवीर पास्ता समेत ॿिया नामज़द जवाबदार पेश थिया। वकील चयो त अदालत पुलिस खे सरकारी इदारनि जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वठण जो हुकुम ॾिनो हो। जांच लाइ GIT जोड़ी वञे। अदालत चयो त ईंदड़ ॿुधणीअ ते चालान बाबति फ़ैसिलो कयो वेंदो। इहो बि तय कयो वेंदो त सरकारी इदारनि खे केस में जवाबदार ॼाणाइणो आहे या न। खेरपुर में चाइनि ॿारनि जी माउ मायरा लाशारी जा कातिल गिरफ़्तार न थियल खां वारसनि जो एहतजाजी मुज़ाहिरो। धरणो ॻोठ भुगरो जे रहवासियुनि पारां केस में मुलविस जवाबदारनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ मेराण हाईवे ते टायरनि खे बायूं ॾेई धरणो हयो। मुज़ाहिरीन चयो त औरत जे क़तल केस में नामज़द जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। वाराए भरिसां मामूली ॻाल्हि तां गाड़ई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो सिरो टो लॻण सबबि नींगर मारिजी वियो। ॻोठ वली आबाद में गाड़ी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो। सिरूं लॻण सबब 15 वरनि जे निगरी शकीला गाॾी मारिजी वई। पुलिस जवाबदार निसार गाॾीअ खे गिरफ़्तार करे वरितो। काज़ी अहमद में लुंडकी शाह ऐं दौलतपुर शाख में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ पुछड़े जे आबादगारनि जो एहतजाज। शाखनि जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। आबादगारनि चयो त आपाशी अमलदार मुंड जे बासरनि ज़मीनदारनि खे पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि। फसल बचाइण लाइ पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे। घोटकीअ में थाणे अंदरि ॻोठाणे जी तज़लील करण वारे केस जी ॿुधणी इल्ज़ाम हेठि आयल अॻूणो एसएचओ ऐं ॿिया अदालत में पेश। ॿुधणी सुभाणे ताईं मुलतवी। सखर मां स्कूल वेंदे 13 वरनि जी निगरी मुबैना तौर अगवा। केस दाख़िल। आबाद थाणे जे हद ॻोठ आबाद इलाका जे रहवासनि 13 वरनि जी निगरी इकरा मुबैना तौर अगवा थी वई। निगरीअ जे ॾाॾे जे फरियाद ते चइनि जवाबदारनि अब्दुल करीम उर्फ माणिक खोसो, रियाज़ खोसो, फाद खोसो, फैसल खोसो ख़िलाफ़ केस दाख़िल।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार।

0: It's 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ. इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे. तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम. यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सलगी 5 मिनटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अभी बुधो प्या यारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध विरांगे वारा बयान बर्दाश्त जो नौर सुभाणे अदालत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ साके ते केस में अली गौर शाह राशिदी के पुट कोनैन शाह बिन नामजद गिरफ्तार जवाबदार में गुलशेर ताज मोहम्मद गुलाम उमर इमरान अली ए शौकत अली शामिल पुलिस मूजिब जवाबदार अली गौर शाह जा मुलाजिम आन सिंध के तलीम खाते स्कूल के वक्त में एक का एक गढ़ी यासीन वासी नौजवान सखर में हथियारबंद हथा कतल लाश अस्पताल मुंतकिल सखर बायपास वट हथियारबंद नौजवान मुनीर अहमद पुट गुलहसन जाफरी के कतल कयो वारसन पारा जवाबदार गिरफ्तार करण जो मुतालबो पुलिस जो चवण आए तो वाक्य जो कारण मालूम न थी सको वधिक जांच कई पई वे खेरपुर में चैन बारन की माँ मायरा लाशारी जा कातिल गिरफ्तार न थियण खिलाफ वारसन जो मुजाहिरो ए धरणो गोठ बुकरो जे विरावास इन केस में मुलविस जवाबदारन जी गिरफ्तारी लाए मेरान हाईवे ते टायरन के बायूं डेई धरणो आयो मुजाहिरीन चयो त औरत जे कतल केस में नामज़द जवाबदारन के गिरफ्तार कयो वञे वाराए भरसां मामूली ॻाल्हि तां गाॾी बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो सिरूं लॻण सबबि नींगरी मारिजी वई गोठ वलीआबाद में गाॾी बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में जहिड़ो थियो सिरूं लॻण सबबि 15 वरनि जी नींगरी शकीला गाॾी मारिजी वई पुलिस जवाबदार निसार गाॾीअ गिरफ़्तार करे वरितो काज़ी अहमद में लुंडी शाख ऐं दौलतपुर शाख में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ पुछड़े जे आबादगारनि जो एहतजाज शाखनि जे पुछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो आबादगारनि चयो त आपाशी अमलदार मुंड जी ज़मीन बासर ज़मीनदारनि खे पाणी विकिरो करे रहिया आहिनि फसल बचाइण लाइ पुछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे सखर मां स्कूल वेंदे 13 वरनि जी नींगरी मुबैना तौर अगवा केस दाख़िल आबाद थाणे जे हद ॻोठ आबाद इलाखा जे रहवासण 13 वरनि जी नींगरी इकरा मुबैना तौर अगवा थी वई नींगरीअ जे ॾाॾे जे फरियाद ते चइनि जवाबदारनि अब्दुल करीम उर्फ माणिक खोसो रियाज़ खोसो ख़िलाफ़
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
4: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती ज़हन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो वो पागल हो जाएगा।
1: मेरी मोहब्बत के काबिल है वो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho
4: khoobsurti ka asal raaz sirf D Skin Beauty Cream. Isme maujood

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस अंदर आज
1: उसी खत्ते की बनी है
0: GAFM नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: स्किन जो पाकिस्तान।
3: अब आप GAFM नेट न्यूज़।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ

0: ઢક્કન બાબત ગમે તે
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: या हे सिंध जी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: கோந்தகலந்து சாபுதை சோரா.
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। It's 5:30 PM. This time check is brought to you by
1: Al Habib Remit, Bank Al Habib, रिश्तों भरोसे जो।
2: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं। आर्च एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्च ब्यूटी क्रीम।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular. Mitiye jo.
5: मकानी चूंडण जो अमल काउंसिल जो मुदो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो। चूंडू न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतवादी रेत ते भाङे 3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज़ एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो।
6: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगड़ो जैसा समझूंगा। अगर पगड़ो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो एमक्यूएम और पीटीआई
5: सूबन बाबति पीर पगल जो किरदार भी एमक्यूएम वारो आहे। कंहिंजी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे। आइन रेफरेंडम बाबत वाज़ह आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त अमरन जो दौर गुज़री वियो, 2 सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे, जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ई ठाहे।

कचो तेल खड़ी वेंदड़ पंज ईरानी पहिरीं जहाज संख्या अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इंकलाब पारां अमरीकी ॿेड़नि खे निशानो बणाइण वारनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी पटेई वज़ीर मार्को रुबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहिरी ॿेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई ते ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर तबाह कया वेंदा। आयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी हथफन से जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अडन के निशानो बणायो। आपना हुर्मुस में 10 खां वधीक बेड़न के निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फौज उर्दन जे शहर अल रज़क में कायम अमरीकी अडे के निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे बिन डिज़ास्टर्स के भी निशानो बणायो वियो। पासारन इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अडे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाजनि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल जे हमलनि जी तसदीक कई वई। ही अस्पताल आहे या मज़ाक? एच आई वी पकड़जी वियो। इस्तेमाल थियल सिर जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 बार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जी इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स सानी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मुअतलीअ खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी

0: इसकी राइड वैसे कंफर्टेबल तो है ना।
1: SHO के अहियां ताई वाकई जी खबर ना है केतन ही केसन में नामालूम मानन खिलाफ भी FIR दाखिल थी वेंदी है को इन केस में ये छो न तो कयो वने आवाम आखिर के वट वने आबिद शेर अली भी चयो त इन मुल्क में न जुजा है न सजा है को निज़ाम सजा जो ना है जेकर अवां इस्लामाबाद जा ॿ अस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुडी मरण जी ॻाल्हि आहे।

0: सिंध असेंबली सिंध आबकारी एक्ट तरमीमी बिल 2026 मंजूर करे वरतो। मोटर व्हीकल तरमीमी बिल भी मंजूर कयो वियो। वही बिल कानून वारे वजीर जलालुद्दीन अंजार ईवान में पेश किया। मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम बाद महीने अंदर रजिस्ट्रेशन न कराईंदड़ गाडी ते दंड लगायो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: ये भी तो जुर्मी हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट चुका है।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना फिर तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढूंढो
2: जी ए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: 6:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए, आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम,
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
1: GFM 91.6।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 7 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
7: टीम जी के हद ताईं इज्जत बचाने की कोशिश कई, बाकी रांदीगर डबल फिगर में भी दाखिल न थी सकिया। अजोकी मैच में विकेट कीपर गाजी होरी, फास्ट बॉलर रजा अल्लाह ए इमरान रंधावा डेब्यू कियो। ग्रीन कैप्स के पहरी मैच में इनिंग्स में 106 रन, बी मैच में 194 रन तां शिकस्त मिली हुई।
8: Introduce the government bill number 32 of the 2026, a bill to amend the Sindh Local Government Act 2013.
9: I rise to move a motion that the special committee
10: the Sindh Local Government Amendment Bill 2026 and report back to the assembly within 1 week. Now I put the motion to the house. Those who are for the motion may say aye and those against it may say no. I rave it and the motion is carried.
7: मेयर ऐं चेयरमैन मुदो खत्म थियण खां पोइ बि एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम कंदा। डिप्टी मेयर ऐं वाइस चेयरमैन लगापियल काउंसिल जा कन्वीनर हूंदा। मकानी चूंडनि जो अमल काउंसिल जो मुदो मुकल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो। चूंडूं न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ बेतमादी रीते 2-3 जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी। कराची मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो। सिंध हुकूमत लोगत बॉडीज एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो। पार्लियामानी सेक्रेटरी पेश कयल दुबई वज़ीर ज़ियाल हसन अंजार जी तजवीज़ ते जोड़ियल ख़ुसूसी कमेटी हिकु हफ़्ते अंदरि रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनिसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़। बिल जे मसवदे मूजिब मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में।
11: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगारो जैसा समझूंगा। अगर पगारो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI।
7: सूबन बाबा तीर पघार जो किरदार भी MQM वारो आहे। कंहिं जी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे, आइन रेफरेंडम बाबति वाज़ई आहे। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़े चयो आहे त आमरण जो दौर गुज़री वियो, 2 सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे, जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे अमरीका पारां तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर्स ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मूजिबि ईरानी ऑयल टैंकर ख़िलाफ़ कार्रवाई पासा इंकलाब पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी परे वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर्स तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर्स ते अमरीकी हमलनि बाद ईरान जो बि अमरीकी अॾपण ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। अबना हुर्मुस में बि 10 खां वधीक भेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिब ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल रज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जे ॿिन डिस्टायरेज़र खे बि निशानो बणायो वियो। पासदार इंकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी तस्दीक कई वई। ही अस्पताल आहे या मज़ाक? HIV पकड़जी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरनि जूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पेम्स साने ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पेम्स इंसामिया खां पुछाणो कयो त मोतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अव्हां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी। ऐं मलबली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर नाहे? केतिरनि ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR

0: दाख़िल थी वेंदी आहे। पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे, न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं मां इस्लामाबाद जा ॿ अस्पताल खे संभाले नथा सघो त इहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे। वज़ीर-ए-आज़म जी सदारत हेठि फाइनेंस प्लान 2026-28 बाबति इजलास। पंहिंजो घर स्कीम ज़राअत ऐं SMEs में तरक़ी लाइ फाइनेंसिंग जो जाइज़ो वरितो वियो। शहबाज शरीफ हारियुनि जे मालियाती वसीलनि ताईं रसाई बिना रंडक यकीनी बणाइण जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तरजीह आहे। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सेज खारान ऐं वाशिक ज़िलनि में गुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो। ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी मारिया विया। वाशिक में ऑपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾे वठि दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो।
1: बेनज़ीर सिम लेने का आख़िरी मौका BISP की जानिब से बार बार याद

0: तव्हां पुलिस जी वर्दी माण्हुनि जी हिफ़ाज़त लाइ पाती आहे, माण्हुनि जूं ॻाल्हियूं मञण लाइ न। पीर रज़ा केस में अव्हां छा कयो? छा कंहिंखे हथकड़ियूं लॻायूं? सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी में सिंध पुलिस जे अमलदारनि खां सख़्त पुछाणो। कमेटी पुछो त मीर रज़ा क़तल केस में जिन माण्हुनि ग़लति रिपोर्ट ॾिनी, इन्हनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई? पुलिस मीर रज़ा ते कंहिं बि क़िस्म जो दबाव नाहे। आबिद शेर अली चयो त जेकॾहिं पुलिस खे कम करणो हुजे त कबर मां बि मोल खे कढी आणे सघे थी। कानून हरकत में न ईंदो त गुंडा अहिड़ी ही रीत गुंडागर्दी कंदा रहनि। मरी चयो त SHO खे मुअतल करण बदिरां जेल में हुजण घुर्जे। हा, पुलिस अमलदारनि एतराफ़ कयो त SHO खां गफ़लत थी। SHO DSP खे मुअतल कयो वियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझल गही मारू डुंगर खांदी जाधा मियर नहीं का चीज न आहे हकी कड़ो नहीं।

0: खुद तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। It's 7:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए। आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा हार्डो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो। आर्च ब्यूटी क्रीम अब आपकी खूबसूरती का फैन। वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बना दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: It's 8 p.m. This project is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Deep National Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular. Mitiye jo ma.
6: मेरा है वाइस चेयरमैन लागापेल काउंसिल जा कन्वीनर हुंदा मकानी चूंडन जो अमल काउंसिल जो मुद्दो मुकमल थियण खां 120 ॾींहं अॻु शुरू कयो वेंदो चूंडू न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन ख़िलाफ़ एतमादी रेत पंगे टे जी अक्सरियत सां मंज़ूर थींदी कराची मेट्रोपोलिटन कार्पोरेशन जो चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रोपोलिटन कमिश्नर हूंदो सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज एक्ट 2013 में तरमीम जो बिल सिंध असेंबली में पेश करे छॾियो पार्लियामानी सेक्रेटरी कासिम सिराज छोमरो पारां पेश कयल बिल ते होर लाइ 12 रुकनी कमेटी क़ाइम सूबाई वज़ीर जलाल हसन लंजार जी तजवीज़ ते जुड़ियल ख़ुसूसी कमेटी हिकु हफ़्ते अंदरि रिपोर्ट पेश कंदी तरमीमी बिल में यूनियन प्रिंसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़ बिल जे मसवदे मूजिब मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो
7: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर रेजोल्यूशन पर वोटिंग के वक्त वॉकआउट करना मुनासिब समझा या जिस पार्टी ने असेंबली में आना मुनासिब नहीं समझा तो मैं उनको भी फिर पगारो जैसा समझूंगा अगर पगारो कुछ नहीं बोल रहा तो उसका भी वही किरदार है जो MQM और PTI
6: सूबन बाबत पीर पगार जो किरदार भी MQM वारो आहे कंहिं जी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे आइन रेफरेंडम बाबति वाज़े आहे पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार कोड़े चयो आहे त आमरण जो दौर गुज़री वियो ॿिनि सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे जंहिंखे सूबन जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो।

0: तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 8:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कैसा महसूस होगा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
6: न थियण जी सूरत में मेयर ऐं चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर तौर कम जारी रखंदा। चेयरमैन ऐं वाइस खे मंजूर थींदी बुलेटिन। कारपोरेशन जो चीफ जार जी तजवीज ते जुड़ियल खसूसी कमेटी हिकु हफ़्ते अंदर रिपोर्ट पेश कंदी। तरमीमी बिल में यूनियन म्यूनिसिपल ऐं टाउन सतह ते मसालती फोरम क़ाइम करण जी तजवीज़। बिल जे मसालती फोरम बिरादरी जे तकरारनि जो हल ॻोल्हींदो ऐं मक़ामी SHO UC चेयरमैन सां राब्ते में रहंदो।
7: अब मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिसने असेंबली में खड़े होकर आउट करना मुनासिब

0: नहीं समझा तो मैं उनको भी पगारों जैसा समझूंगा। अगर पगारों कुछ नहीं बोलगा तो उसका भी वही किरदार है जो एमक्यूएम और पीटीआई
1: आहे कंहिं जी ख़्वाहिश या मर्ज़ी ते रेफरेंडम नथो थी सघे आइन रेफरेंडम बाबति वाज़े आहे। सिंध जे सदर दौर गुज़री वियो, ॿिनि सालनि बाद इलेक्शन थियणी आहे, जंहिंखे सूबनि जो शौक़ु आहे इलेक्शन विड़े ठाहे।

0: ईरान ऐं अमरीका विच में चिकताण वधी वई। अमरीका पारां कचो तेल खणी वेंदड़ पंज ईरानी बहरी जहाज़नि खे तबाह करण जी दावा। सेंटकॉम ईरानी टैंकर ते हमलनि जूं वीडियोज़ बि जारी करे छॾियूं। सेंटकॉम मौजूदु ईरानी ऑयल टैंकर ख़िलाफ़ कार्रवाई। पासदार ऐं अनकला पारां अमरीकी बेड़नि खे निशानो बणाइण वारियुनि कोशिशनि बाद कई वई। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो बि चयो आहे त तेहरान अमरीकी बहरी बेड़नि खे ॿीहर निशानो बणाइण जी कोशिश कई त ईरान जा समूरा ऑयल टैंकर तबाह कया वेंदा। ऑयल टैंकर से अमरीकी हमलन बाद ईरान जो भी अमरीकी अॾफनि ते जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। अबना हुर्मुस में भी 10 खां वधीक बेड़नि खे निशानो बणाइण जी दावा। रूसी मीडिया मूजिबि ईरानी फ़ौज उर्दन जे शहर अल अरज़क में क़ाइम अमरीकी अॾे खे निशानो बणायो। अमरीकी बहरिया जी ॿिन डिज़ास्टराइज खे बि निशानो बणायो वियो। पासदारनि इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी अॾे ते कार्रवाई दौरान अमरीकी जहाज़नि ऐं हैंगर्स खे वॾो नुक़सान पहुतो आहे। उर्दन पारां ईरानी मिज़ाइल हमलनि जी जी हिदायत कंदे चयो आहे त घटि आमदनी वारनि खे सस्ता घर फराहम करणु पहिरीं तर्जी आहे। ही अस्पताल आहे या मज़ाक? HIV पकड़जी वियो ऐं इस्तेमाल थियल सिरिंजूं ॿीहर इस्तेमाल कयूं वयूं। 14 ॿार फोत थिया आहिनि, पोइ बि FIR छो दाख़िल न थी आहे? सेनेट जे इंसानी हक़नि बाबति कमेटी पारां पिम्स थाने ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। चेयरपर्सन पिम्स इंतज़ामिया खां पुछाणो कयो त मुअतली खां पोइ ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कहिड़ी कार्रवाई कई वई ऐं जांच कमेटी जी सिफारिशनि ते केतिरो अमल कयो वियो। अवां खे अंदाज़ो आहे त हिकु माउ कहिड़ी तकलीफ़ मां गुज़रे थी। एमल वली ख़ान चयो त छा SHO खे अञा ताईं वाकिए जी ख़बर नाहे? केतन ई केसनि में नामालूम माण्हुनि ख़िलाफ़ बि FIR दाख़िल थी वेंदी आहे, पोइ हिन केस में ईअं छो नथो कयो वञे? अवाम आख़िर कंहिं वटि वञे? आबिद शेर अली बि चयो त हिन मुल्क में न जज़ा आहे न सज़ा ऐं न ई को निज़ाम। जेकॾहिं अवां इस्लामाबाद जा ॿ अस्पताल बि संभाले नथा सघो त उहा ॿुॾी मरण जी ॻाल्हि आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में कार्रवायूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि सिक्योरिटी फोर्सिस खारान ऐं वाशक ज़िलनि में गुझे इतलाउ ते आपरेशन कयो। आपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में कम कंदड़ 11 दहशतगर्द मारिजी विया। खारान में कार्रवाई दौरान रोड बंदि करण जी कोशिश कंदड़ 8 दहशतगर्द मारिया विया। वाशक में आपरेशन दौरान फायरिंग जी ॾेवठ दौरान 3 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां बारूदी हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो। सदर वज़ीर आज़म ऐं वफ़ाक़ी घरू वज़ीर पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सिस खे भेटा पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म इफ़्तिखार गिलानी जी मुलाक़ात। शहबाज शरीफ जी इफ़्तिखार गिलानी खे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो मनसब संभालण ते मुबारकबाद। मुलाक़ात में आज़ाद कश्मीर जे अमन तरक़ी ऐं जारी फलाही मनसूबनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तानी हुकूमत आज़ाद कश्मीर जे अवाम जी भलाई लाइ भरपूर सहकार कंदी रहंदी। आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त ख़िते जी तरक़ी ऐं अवाम जी भलाई लाइ सभई सलाहियतूं कुतुब आंदियूं वेंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो

0: तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अभी बुधोपिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

म्यूजिक ट्रैक भी हूंदा अवां जूं लाइव कॉल्स भी हूंदियूं। असां प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां सां ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं ऐं 15-20 मिंटनि में आफ्टर ब्रेक में असां अवां जी कॉलिंग जेको आहे अटेंड करण जो सिलसिलो शुरू थींदो आहे। अवां जूं कॉल्स कंटिन्यूसली असांखे अचनि पियूं, बेहद इंतज़ार रहंदो आहे अवां जी कॉल्स जो, पर जेकॾहिं अवां सां का ॻाल्हि ॿोल न थींदी, का दिलि जी ॻाल्हि न थींदी, सिर्फ़ जेको आहे त फोन कॉल अटेंड थींदी, त ॿिया सभई दोस्त जेका त प्रोग्राम जे उन पैटर्न उन मज़े खां रहिजी वेंदा।

वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सा गद आऊ है आबिद चौहान आया आवा बुधी रहा हो GAFM नेटवर्क दोस्तों हियर वक्त थियो है एकड़ी नंढड़ी कमर्शियल ब्रेक जो वरी वरंदा से वापस बुधंदा रहो GAFM नेटवर्क

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
0: अपना शहर, अपना घर, सखर और सखर की आवाज GFM 88.
2: छा तव जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवा लाए आए एक बेहतरीन मौको. सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी हैं. 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA. खास सहूलतों, स्कॉलरशिप मौजूद. 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री. जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ ₹10,000 दाखिला फीस, फीस सेमेस्टर सिर्फ ₹60,000. हिते तवा के मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकमल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत. ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे. याद रखो, सीट्स महदूद आहिन, तह करे पेंजे रोशन मुस्तकबिल लाए अॼु ई दाखिला वठो. एक खास गाल, इते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सेस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन बिया सब कोर्सेस पिण थींदा आहिन. एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, Sector 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर. राबतो 07115635642 ऐं 03106611. जमींदार भाइरन के सिंध पेस्टिसाइड तरफा अस्सलाम वालेकुम. जी त हर साल वांगुर हिन साल बि सिंध पेस्टिसाइड आबादगार भाइरन लाइ ज़रई माहिरन जी निगरानी में ख़िदमत में पेश करे थो. कमंद जे फसल लाइ तमाम घटि ख़र्च में जदीद टेक्नोलॉजी जा नवा भाण ऐं ज़िंक, जेके कमंद जी फी ज़रिए पैदावार वधाए सघनि थियूं. हिन खां अलावा ईसा, रॉडल्स ऐं रावी कंपनीअ जूं फुटिन जे जीत जी दवा, सारिन लाइ ज़िंक, गंदगाह जी दवा ऐं ज़हर, कमंद लाइ इम्पोर्टेड पोटाश 25 किलो में ऐं पोटाश 20 लीटर झरियूं पिण मौजूद आहिनि. भाइरो, इन महांगाई जे दौर में बनबर डीलर खां बचो. सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी ते अचो. प्रोप्राइटर श्याम लाल प्रतीक कुमार, पनवाकिल. राबते जे लाइ 03004-87-14-039. एड्रेस सिंध पेस्टिसाइड एजेंसी, नर्स हबीब बैंक, पनवाकिल.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक. रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: यार मां छा कयां, किथे वञा, घर में वेठो आहियां पर ठीक ही न आहियां. शायद मुझे जिंदगी लाइ का दवाई नाहे थई.
5: छो भला, छा थियो आहे तोखे? साफ़ साफ़ ॿुधा, मसलो छा आहे?
4: यार हिकु मसलो हुजे त ॿुधायां. मुंहिंजी त मसलनि जी कतार लॻल आहे. न बुख सही लॻे थी ऐं जे कुझु बि खावां थो त हज़म ई नथो थिए. पेट फूकजी वञे थो, हथ पेर सुन थी वञनि था ऐं सॼो ॾींहुं सुस्ती महसूस थिए थी. कंहिं कम जो रहंदो ई न आहियां.
5: यार तुंहिंजा घणा न, बस हिकु ई मसलो आहे.
4: हिकु? इहो कीअं?
5: हा, तुंहिंजो मैदो ख़राब आहे. छा तो न ॿुधो आहे, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त. जे मादो सही न हूंदो त बुख बि न लॻंदी, न हाज़मो थींदो ऐं न ताक़त मिलंदी.
4: त पोइ मां छा कयां?
5: सवलो हल आहे. इस्तेमाल कर शिफ़ाए मैदा कोर्स. ए कुदरती जुजन मा तैयार कैल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आए मजबूत करे छरींदो बुख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई।
4: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो?
5: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आए राबते जे लाए नंबर भी अथई 0305-58-00-616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त छा अवां जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
3: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकिणण चाहियो था त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते
5: जिते तव्हां खे मिलन थियूं टोयोटा सुजुकी होंडा
3: किया स्पोर्टेज ऐं ॿियनि कंपनियुनि जूं मुख़्तलिफ़ गाॾियूं जिन में जापानी इम्पोर्टेड ऐं हाइब्रिड गाॾियूं पिण शामिल आहिनि।
5: तव्हां जी पसंद ज़रूरत ऐं बजट मुताबिक़ गाॾी जी चूंड में बहितरीन सहकार
3: बालाज मोटर्स मोरो ते हर क़िस्म जे गाॾियुनि जी ख़रीद ऐं विकिरो जी सहूलियत मौजूदु आहे मुनासिब अघनि ऐं बहितरीन डील सां।
5: इन खां अलावा पूरे पाकिस्तान में अव्हां जिते बि हुजो पंहिंजी गाॾी बुक कराए सघो था।
3: बालाज मोटर्स निस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अॼु राबतो करियो 03002963322।
0: मौसर होम्योपैथिक इलाज अब सखर शहर में डॉक्टर आजम अली मुगल के साथ मेदे की खराबी गैस बदहजमी कब्ज खूनी उबारी बवासीर अर्कुन नसा घुटनों जोड़ों और कमर दर्द गुर्दों की पथरी समेत मौतदित अमराज के लिए मुस्तनद होम्योपैथिक तशखीस और इलाज हर मरीज का इंफरादी मुआयना मुकम्मल रहनुमाई और बीमारी की नौयत के मुताबिक इलाज टाइमिंग रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जुम्मा तातील एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप के बराबर में रेस कोर्स रोड सखर राबता 03112082600 एंड 0333714311 डॉक्टर

0: शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल और बालाई सिंह के मशहूर आंखों की बीमारी के माहिर डॉक्टर ओम प्रकाश मंगलानी आपकी खिदमत के लिए मौजूद होंगे। एड्रेस हिंदू पंचायत अस्पताल, म्यानी रोड, सखर। राबता 0333-7125-706, 0333-7134-147 और 0300-3123-267।
1: क्या आप अपना पैगाम हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स हो, किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक, बिजनेस के प्रमोशन, जॉब वैकेंसीज, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, इवेंट्स, सेमिनार्स, स्पेशल ऑफर्स, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स, लाइव मेंशंस और कस्टमाइज्ड प्रमोशनल कैंपेन्स या किसी भी किस्म के एडवर्टाइजिंग कैंपेन, GFM है आपका भरोसेमंद मीडिया पार्टनर। अपनी एडवर्टाइजिंग को दीजिए ज्यादा रीच, बेहतर इम्पैक्ट और मौसर नतीजे। एडवर्टाइजिंग और बुकिंग के लिए आज ही राब्ता करें स्टेशन मैनेजर बाबर शेख 0300-9319-6677।
2: GFM 88
3: सिंध की आवाज।
4: छात्र आज ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बनजन, तो कोई तवान लाए आए एक बेहतरीन मौके सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाए दाखिलाओं जारी आहिन। 4 सालन जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN, GBSM, 5 सालन जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD, 5 सालन जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV, CMW, CNA, खास सहूलतों स्कॉलरशिप मौजूद। 5 सालन जे कोर्सेज में एडमिशन बिल्कुल फ्री। जरे तो DPD प्रोग्राम में सिर्फ 10,000 रुपया दाखिला फीस, आई फीस सेमेस्टर सिर्फ 60,000 रुपया। हिते तो आके मिलंदा एयर कंडीशन क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, मुकम्मल लाइब्रेरी, तजुर्बेकार फैकल्टी, हॉस्टल, पिक एंड ड्रॉप, आई फिजियोथेरेपी, OPD जी बेहतरीन सहूलत। ये इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट का मंजूर शुदा एंड पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल का तस्लीम शुदा लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जो डिग्री याफ्ता आहे। याद रखो सीट्स महदूद आहिन, तह करे पंहिंजे रोशन मुस्तक़बिल लाइ अॼु ई दाख़िला वठो। ऐं हिकु ख़ासि ॻाल्हि, हिते मेडिकल जा शॉर्ट कोर्सिस, OT, हेल्थ टेक्नीशियन ऐं ॿिया सभु कोर्सिस पिण थींदा आहिनि। एड्रेस सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। राबितो 0711-5635-642 ऐं 0310-8166-111। 44 सालनि जो तजुर्बो, हज़ारे मरीज़नि जो एतमाद, आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद। 44 सालनि जे वसी तजुर्बे सां हर क़िस्म जा आसाबी अमराज, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, गैस, बदहज़मी, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, बे औलादी, वारनि जो किरण, गंजपण, फॉलेज, ख़ारिश ऐं ॿियनि मुख़्तलिफ़ सिहत जी तकलीफ़ुनि लाइ माहिराना होम्योपैथिक सलाह ऐं मुआसर इलाज फराम करे रहिया आहिनि। आगा होम्योपैथिक क्लिनिक, सखर। पुलिस हेडक्वार्टर चौक, पुलिस लाइन, सखर। टाइमिंग छंछर खां खमीस, सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। अपॉइंटमेंट ऐं वधीक मालूमात लाइ हींअर ई राब्तो करियो 0326-22-00-440।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए। हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 0300-9312700।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: GS सखर FM 88, सखर की आवाज़।

0: वेलकम बैक प्रोग्राम दिल जी गाल सां गदा आया आबिद चौहान आवा बुधी रायो जी एफएम नेटवर्क दोस्तों बिल्कुल हियर वक्त हो है आवा जो कॉलिंग अटेंड करण जो असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इन ते आवा असा के व्हाट्सएप वसीले शॉर्ट टेक्स्ट वॉइस नोट भी मोकले सको था ए असा के एसएमएस करण लाए 888 ते एसएमएस पण करे सको था असा सा गद कॉलर शामिल आहन कॉल शामिल कंदा से प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम के प्यारा किथा का अस्सलाम वालेकुम केर प्यारा किथा का हेलो
1: हेलो सर किले रस्ता मोरो खान सोडो खान जरदारी
0: सोडो खान जखरानी वेलकम बलिकार खुशामदीद प्यारा प्रोग्राम
1: सर सोडो खान जरदारी
0: जरदारी
1: जी सर
0: साईं वेलकम बलिकार खुशामदीद प्रोग्राम कीअं थो लॻे
1: जबरदस्त प्रोग्राम चार जबरदस्त शायरी
0: इन में अवां बि पंहिंजी का चूंड शायरी हींअर लाइव कॉल वसीले असांखे ॿुधाए सघो था दोस्तनि जी हूंदी आहे शामिल सॼी शायरी मुंहिंजी तरह हूंदी आहे मूं नाचीज़ जो बि हिकु अधु को शेर हूंदो आहे बाक़ी दोस्तनि जी शायरी बि शामिल कंदा आहियूं नाले वारनि शायरनि जी शायरी पिण शामिल कंदा आहियूं अवां बि असांजे प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में पंहिंजी दिलि जी ॻाल्हि करे सघो था छा चवणु चाहींदव
1: प्रोग्राम जबरदस्त
0: प्रोग्राम ॿुधंदा रहो लाज़मी फरमाइश पूरी थींदी दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो
1: जी
0: वरी महिरबानी प्यारा कुर्ब थैंक यू

शायरे मुसवर चौहान जो इंतहाई खूबसूरत नज़म शामिल कंदासीं प्रोग्राम में। उनवान आहे महबूब डिक्टेटर। चरीअ सां चाह हुआ मुंहिंजो, चरी बि साह हुआ मुंहिंजो। चरीअ सां चाह हुआ मुंहिंजो, चरी बि साह हुआ मुंहिंजो। चरीअ खे को त समझाए, चरीअ में साह हुआ मुंहिंजो। करे हर रोज़ थी जेड़ा, कॾहिं कहिड़ा कॾहिं कहिड़ा, ॿुधायां मां भला कहिड़ा। ज़िदी कंहिं ॿार अड़े जहिड़ी, अचे थी होड ते जंहिं पल। सफ़ा अहसास खां खाली, रहम ऐं क्यास खां खाली। लॻे फिरौन थी तंहिं पल, लॻे ई हू बहू जहिड़ी। ज़ियाउल हक़ ऐं हिटलर, मुंहिंजी महबूब डिक्टेटर, मुंहिंजी महबूब डिक्टेटर। सिंधुअ जे छोलड़नि जहिड़ी, मिठीअ जे मोरड़नि जहिड़ी। भिटाई जे सुरनि वर्गी, मधुर संगीत ऐं सरगम। दंबूरो तार आमूलै, समूरे साह खां प्यारी। रुए अरवाह खां प्यारी, सॼो संसार आमूलै। अलाहू लाडली आहे, मखण जी चाडड़ी आहे। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। खिले त फूल महकाए, रोए त रात जागाए। मिले त मोर रक्षा थियन, छिजे त साह सहकाए। रुसण कंहिंखां सिखी आहे, कुहण कंहिंखां सिखी आहे। इहा मूंखे ख़बर नाहे, जहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। जहे थी हू हक़ीक़त में, ठहे थी ख़्वाब में अक्सर। नकी थी प्यार सां समझे, सहे थी को न को दड़को। ठके ठोके ऐं खड़काए, वठे वहवार थी पंहिंजो। अड़ीअ ते बस अड़ी आहे, मिज़ाजन चिड़चिड़ी आहे। हू उबती खोपड़ी आहे, सड़े थी बर्फ़बारीअ में। कढ़े थी सर्द सियारे में, ठरे थी आग भड़काए। दिलनि जा चैन तड़पाए, थकावट ॾींहुं सारे जी। बग़ावत ओड़े पाड़े जी, सुबुह ऐं शाम धारे जो। वेही पो वांद काईअ में, छंडे थी छोहड़ा सारा। अंधा ऐं के मंडा काणा, हणे इल्ज़ाम थी मूं ते। चरीअ खे को त समझाए, ईअं मूंखे न तड़पाए। संदसि में साह हुआ मुंहिंजो, चरी वे साह हुआ मुंहिंजो।

मुलै भगवान जहड़ी आ रहीमो राम जहड़ी आ, मुलै भगवान जहड़ी आ रहीमो राम जहड़ी आ, मुलै काबो आहे किबलो नकी मूखा जुदा आहे, मुझी महबूब डिक्टेटर मुझे लय खुद खुदा आहे, खुदा आखिर खुदा आहे, खुदा के केर समझाए, खुदा के केर समझाए।

0: जी वो केडी ने बेचई या मुखे हेखल छरे वई या ए बिल्कुल आशिक मजबूर हुंदो है जने महबूब पंजी मनमानी ते अची वने तो हुआ मंथ भी कंदो आ दड़का भी दिंदो आ दाब भी दिंदो आ ए नेट इहो इजहार भी कंदो आ तो हु केडी ने बेचई या मुखे हेखल छरे वई या प्रोग्राम में एडी कॉल शामिल कंदा से कॉलर असा सा गड लाइन ते मौजूद आहन वालेकुम सलाम केर साईं के थाका
1: भाई यासमीन बात कर रही हूं मीरपुर खास से
0: सॉरी
1: मीरपुर खास से बात कर रही हूं यासमीन
0: मीरपुर खास से वेलकम मलिकार खुश आमदीद जियान वशात के और पखर अगले प्रोग्राम दिल की बात कैसा लग रहा है
1: आपका शो सुनती हूं मेरे
0: तो बड़ी मेहरबानी जरा नवाजी शुक्रिया
1: और भाई एक घंटे से तो सॉन्ग प्ले हो रहे हैं उर्दू सॉन्ग
0: बिल्कुल उर्दू चलते हैं सॉन्ग आप सुन रही होती हैं तो
1: मतलब आप मुखातिब नहीं हुए सॉन्ग आ रहे थे
0: सॉरी मैं समझा नहीं
1: मैंने कहा सॉन्ग आ रहे थे आप मुखातिब 9:45 से हो रहे
0: नहीं ऐसा नहीं है 9:45 से पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है 9:15 पे और 9:15 पे हमने
1: वो तो मैं सुन रही हूँ भाई मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही थी
0: अच्छा
1: सॉन्ग आ रहे थे
0: हाँ तो सॉन्ग तो प्ले था ना डेफिनेटली
1: सॉन्ग
0: जी जी
1: और
0: जी, जी.
1: भाई आप नाहिद अख्तर का सॉन्ग प्ले कीजिएगा
0: किसका
1: शबे गम
0: नाहिद अख्तर का
1: जी हाँ शबे गम
0: शबे गम और कुछ अपने दिल की बात कहना चाहेंगी किसी को पैगाम
1: और FM. आपके बाद बहुत अच्छी है आप उर्दू की शायरी सुनाया करें
0: बिल्कुल उर्दू की शायरी शामिल करेंगे आपकी
1: हिंदी भी समझ में आती है
0: बिल्कुल बिल्कुल दोनों सुनाएंगे
1: अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे
0: पैगाम किसी को कुछ देना चाहेंगी
1: बस मेरी तरफ से सब सुनने वालों का सलाम
0: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया थैंक यू
1: अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज

0: अपना शहर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: 10 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू
1: स्किन ब्यूटी।
3: अब आप सुनेंगे GKTN न्यूज।
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी
5: कुछ नहीं बोल तीर पगारे जो किरदार भी एम के एम वारो आए कहें जी तेरे
6: या जिस पार्टी ने असेंबली में आना होना सब नहीं।

अनारा कचो पंज ईरानी बहरी जहाजन के तबाह कर दिता हुआ। सेंट काम ईरानी टैंकर्स से हमलन जो वीडियोज भी जारी। टैंकर्स खिलाफ अमरीकी तेहरान अमरीकी

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सुनते जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सुनते जो आवाज बुधंदा रहो।